सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: इसीलिए हम कहते हैं संकल्प क्यों करते हो, पता नहीं शाम तक जीवित रहें कि ना रहें, हमें भरोसा नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें। भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में हैं कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय नहीं शरीर सामर्थ्य रहे तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी, तो अब करना चाहिए। फिर देखो संकल्प पूरा करना चाहिए। तो अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे। और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि 108 के
3: वो तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा। ऐसे भक्ति मिले
2: हाँ, तो करना चाहिए फिर, हमें लगता है करना चाहिए। पर अगर समय के पधार गया तो फिर कैसे कर पाएगा। मृत्यु लोक है और मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा एक मिनट का नहीं अपने शरीर का, कि एक मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे क्यों भाई, पक्का है किसी को पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो हम क्या संकल्प करें। हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे, परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया भगवान के भरोसे। बाबा जी ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे, करना चाहिए। पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों करें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे तो हमारा काम पूर्ण, स्वार्थी हो क्या। हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे, ये हमें बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए कोई बात नहीं, संकल्प मत करो, मांग जरूर लो तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगो तो भी पूरा मत करना। ये भक्तों की मांगे होती हैं, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि नाथ मेरी आवश्यकता तो है, पर अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। ये जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान में भी देखी। एक दिन उन्होंने कहा क्या बताएं, जीवन निकल गया, छक्के नाम जपने को नहीं हुआ, रात दिन मंत्र में नाम में लगे गए, रात दिन दसों वर्ष समीप रह के सेवा में रहे। तो देख बोले क्या बताऊं, पूरी जिंदगी निकल गई, छक्के नाम जपले को नहीं मिला। तो भगवत भजन करने वाले में भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि रात दिन भजन करने पर भी उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा, यही अखंड भजन बनाता है, यही अखंड। पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करने की रुचि दे दो। यही भजन असली भजन का ही फल है, भजन करते हुए भजन की इतनी भूख होना कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन करते। अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा, और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में वो भजनानंदी नहीं होता, जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है वही भजनानंदी कहा जाता है। अपनी बात कहते हैं मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था पर वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ, तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है, और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी और गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें, जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर, इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले वो वैसा करने लगे तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा, ऐसे शिष्य की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं, एक उड़िया बाबा ने सुनाया था प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं। एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक, उनके पास गए और वो मदिरा पीते थे, वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के गुरु की छवि लेके पूजा में रख के और मंत्रानुष्ठान अशुद्ध मंत्र। एक साल ही हुआ कि माँ भद्रकाली प्रकट हो गई काली, और उनका बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। तो उनका मां पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, गुरु हमारे परब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले। बोले बेटा तो बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है। मां ने कहा तो उनका मां अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा, अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम एक साल में आ गई कैसे आ गई। बोले बताने आई हूं कि मंत्र अशुद्ध है। तो उनका मां मैं अपने गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है, गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं। फिर हम गुरु को दोष दर्शन में देखें, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही, हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है। विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को, और अहंकार जब मिटिया मेट हो गया तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को हो साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है, सबसे कठिन बात विश्व में समझ लो गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना, और गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले अहंकार नष्ट नहीं होगा। ये खुली बात कह रहे, गुरु ही एक वो खिलाड़ी हैं जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ, गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए, और दूर से उनको परब्रह्म मान के बिना निंदा किए उनके द्वारा बताई हुई उपासना में रथ हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा, दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा है। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में ही कदम रख सकते हैं, ऐसे हम जीवित हैं परमार्थ में चल रहे हैं तो केवल अपने गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं। किंचन मात्र कुछ नहीं, केवल वो ऐसे पकड़े हुए हैं तो हम चल रहे हैं, अगर वो ऐसे छोड़ दें तो धम्म से गिर जाए। गुरु कृपा ही केवल हम, गुरु कृपा है वो दैन्यता, गुरु कृपा से आती है। महाराज जी धन्य भाग है आपकी कि आप दैन्यता चाहते हैं। हाँ परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की, बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना, बस इसी से दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के, उसमें इससे ज्यादा और किसी तीर्थ में नहीं पवित्रता है जितनी रुदन में पवित्रता है। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब अपने प्यारे प्रभु के लिए रोना आता है तो हृदय निर्मल तार तार निर्मल हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। पर भगवान की तीन प्रकार की लीला है, एक है सृजन और एक है पालन और एक है संहार, और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं, तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचाए, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, यशोदा मैया स्वयं भगवान लाला के रूप में आयला तो गौ की पूछ से झाड़ला, और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराना, दान देना, मेरा लाला कन्हैया सुरक्षित रहे, क्योंकि बड़े बड़े आक्रमण हुए ना, पूतना है, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, तो मैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाएं हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने पुत्र का महान स्वरूप दिखाने पर भी दिखता ले, क्योंकि माँ है ना, उनको लगता है मेरा लाला है, तो बार बार वो परेशान हो जाती थी। और स्वयं भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया, केशव भगवान बाजू की रक्षा करे, ऐसे करे, ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण, दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो, मेरे पुत्र को कभी विपत्ति ना हो। तो ये देखो, माँ में बहुत बड़ी सामर्थ है। अगर माँ तपस्या पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा माँ ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जे भी सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले, वो अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तू मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तू मारा जाएगा, इसलिए जा, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है, अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा उनका, अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। तो उनका मां ने कहा है, बच्चे हो कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ओ, ऐसे पत्ता लगा के ऐसे गांधारी ने जी ही आंख खोले, ऐसे दे उनका, ए पत्ता क्यों लगा लिया? उनका मां, तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे उनका, धोखा कर दिया तूने, अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा, यही से कमजोर हो गया। क्योंकि और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए, जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में लाख जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा कर ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते, इसीलिए भगवान ने। तो मां में कितनी सामर्थ्य है, आप देखो अधर्म युक्त चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से, नाम से परम गति होती है। राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संगी जन होंगे, रोज सत्संग सुनते होंगे, सुनो, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, ये पूरा पद। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा, आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा राधा नाम। तुम्हें चिंता नहीं करनी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
9: क्यों, क्या हुआ है?
8: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
9: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
8: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
10: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

तथा भार्या सीता के साथ पर्ण कुटी में निवास करते हुए श्री राम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिनहिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अब बेटा बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है।

0: इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
0: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: का फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99 393 65 93।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। नहर में पानी आते ही बांध टूटा, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। पोस्ट ऑफिस के खाते से 19 लाख रुपए की हुई हेराफेरी, केस दर्ज। हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक अभियुक्त को 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 6,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गोपालगंज के द्वारा भोरे थाना कांड संख्या 152 2024 धारा 25(1)(b)(a) एवं 26(a) आर्म्स एक्ट के अभियुक्त बबलू चौहान, पिता राम किशन चौहान, साकिन सिसई, टोला बैकुंठ थाना भोरे, जिला गोपालगंज को दोषी करार देते हुए आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड तथा 26(a) आर्म्स एक्ट में 6 महीने के कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि अभियुक्त को सजा दिलाने में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इधर हथुआ में पोस्ट ऑफिस के खाते से 19 लाख रुपए के हेराफेरी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में हथुआ के जादो पिपरा के रहने वाले जनक सिंह की शिकायत पर हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बढ़िया गांव के रहने वाले एजेंट दिलीप सिंह और जादो पिपरा गाँव के रहने वाले वैभव कुमार राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक अनुसंधान कर रही है। गंडक नहर में विभाग ने पानी छोड़ दिया। किसानों को सिंचाई के लिए प्रत्येक वर्ष पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के नियत से गंडक नहर में पानी को छोड़ा जाता है। इस वर्ष भी जैसे ही गंडक नहर में पानी को छोड़ा गया तो बताया जा रहा है कि बरौली क्षेत्र में नहर का बांध टूट गया। इसके वजह से कई गाँव में पानी घुस गया। बरौली के कहला बिशुनपुरा में बांध टूटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पानी तेजी से आसपास के गांवों की ओर बढ़ा। सूचना मिलते ही विभागीय कर्मी मौके पर पहुंचे और बांध के मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि देर शाम तक स्थिति को नियंत्रित किया गया था। जिलाधिकारी ने भी जानकारी मिलने के बाद स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने का निर्देश दिया। इधर मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 40/2011 में भी दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने प्रत्येक पर 1250 रुपए का अर्थदंड लगाया है। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 40/2011 जिसमें आईपीसी की धारा 341, 323, 337, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज था। इसी मामले में ACJM 1 गोपालगंज के द्वारा अभियुक्त गजाधर प्रसाद पिता नगीना प्रसाद एवं 2 मुन्ना प्रसाद पिता गजाधर प्रसाद यानी दोनों बाप बेटे हैं। ये दोनों ग्राम कुमरार के रहने वाले हैं जो मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 से इन पर केस चल रहा था और इसी केस में दोनों को दोषी करार देते हुए अभियुक्तों को 1250 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। सजा दिलाने में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में बीरबल राजभर उर्फ रिंकू, पिता राजेंद्र राजभर, साकिन बैरिया थाना कटिया का निवासी है। तो वहीं एक मामले में प्राथमिकी आरोपी बिक्की कुमार गोड़, पिता उपेंद्र गोड़, साकिन बगहवा थाना कटिया जिला गोपालगंज को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास में अलग अलग कांड दर्ज हैं और इसी में ये फरार चल रहे थे तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों, दूरदर्शी सोच और जन सेवा के प्रति समर्पण से बिहार के विकास की मजबूत नींव रखी है। विगत 2 दशकों में हुए सकारात्मक बदलाव उनके नेतृत्व और विजन की पहचान है। आज भी वे करोड़ों बिहारियों के लिए प्रेरणा, विकास और सुशासन के प्रतीक हैं। जन कल्याणकारी और समावेशी विकास के उनके संकल्प ने बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज बिहार जो विकास की रफ्तार पकड़ा है, जिस पथ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रखा हुआ नींव है, जिसको लेकर वर्तमान सरकार लगातार बिहार के विकास को लेकर काम कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया बाजार में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों तरफ से कुदाल, टांगी और फरसा तथा लाठियां चली, जिससे खूनी संघर्ष में लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कई लोग धारदार हथियारों और लाठियों के साथ एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंचकर वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि वीडियो में उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और एक एक व्यक्ति की जांच कर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के तत्वाधान में भोजपुर में कुलहरजी एवं कुलहटिया गांवों में खेत बचाओ अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की कृषि समस्याओं को समझना, उन्हें वैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना तथा सतत एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने ऑफिस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपने ऑफिस में जन समस्याओं को सुनते हैं और उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। कटिया थाना क्षेत्र के डेरवा झरही नदी में नहाने गया एक बच्चा लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि यह बच्चा मिथिलेश यादव का 7 साल का पुत्र अंगद यादव है। घटना के बाद से परिवार और इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और स्थानीय अंचलाधिकारी ने गोताखोरों की मदद से नदी में बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने बच्चे की खोज के लिए NDRF टीम बुलाने की भी मांग की है। नदी के किनारे घटना स्थल पर देर शाम तक भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। बताया जा रहा है कि डेरवा झरही नदी में यह बच्चा नहाने गया था और अचानक गहरे पानी में लापता हो गया, जिससे परिजनों में हड़कंप मचा है। फिलहाल इसकी तलाश की जा रही थी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। नहर में पानी आते ही बांध टूटा, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। पोस्ट ऑफिस के खाते से 19 लाख रुपए की हुई हेराफेरी, केस दर्ज। हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
10: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
17: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
18: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
19: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
20: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-97-06-575।
21: I have always fortunately been given some kind of interesting speaking role, you know, in the film. एक गलती मैंने जो की, जो मुझे बहुत early in life एहसास हुआ था, the importance of costume design and everything was कि हम एक play कर रहे थे, कुछ इंडिपेंडेंस है, तो एक आजादी का एक play था, तो we were doing that play और मैं वहां पहुंच गया, and I didn't know, last minute I decided what to wear, so I wore a kurta, जिसके नीचे मैंने jeans पहन लिए। तो सब लोग सोचते हैं यार तू आजादी के लिए जींस और कुर्ता पहन के कैसे लग रहा है, तो देन आई रियलाइज दैट यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दोस डिटेल्स आल्सो राइट, सो दीस थिंग्स स्टे विद यू।
22: अपने पहले ही डायरेक्टोरियल वेंचर से बॉक्स ऑफिस सक्सेस टेस्ट करने वाले फरहान ने पिछले 17-18 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ही इज अ मैन हु हैज डॉन्ड मेनी हैट्स। क्या ये शुरुआत से ही उनका लक्ष्य था या ये समय के साथ अपने आप होता गया?
21: नहीं, थोड़ा मतलब एक गोल होना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज यू कैन जस्ट ड्रिफ्ट अलोंग। लेकिन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट यू शुड गिव योरसेल्फ अ गोल अ लिटिल बिट लेट, यू नो। आई फील, क्योंकि जो जिंदगी में जो भी हुआ है, वो दिल चाहता है के साथ हो, रॉक ऑन के साथ हो, भाग मिल्खा भाग के साथ हो, ये सारी चीज़ें मतलब कोई प्लान नहीं कर सकता, यू नो। तो थोड़ा बहुत एक फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि मतलब आप अपने करियर के लिए मतलब क्या चाहते क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई डोंट बिलीव इन दिस कि मुझे नंबर वन डायरेक्टर बनना है या नंबर वन एक्टर, आई डोंट नो हाउ यू एक्सप्लेन दैट, यू नो। लेकिन द फैक्ट कि मैं किस तरह की फिल्मों से जुड़ना चाहता हूँ, किस तरह की फिल्में बनाना चाहूंगा, आई थिंक दैट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी फिर क्रिएट हो जाती है विद द कॉन्टेंट दैट यू आर पार्ट ऑफ।

0: मेरी पहली फिल्म एक्चुअली जिसमें मैंने एक्टिंग की वो तो रिलीज हुई नहीं है. जो डायरेक्टर था उस फिल्म का आनंद सोरापुर, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं. तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं फिल्म बना रहा हूँ एंड यू शुड एक्ट इन इट, तो आई फील यू विल बी एबल टू डू इट. तो लेट्स वर्क टुगेदर एंड विल टेक आवर टाइम, आई मीन मेक इट द वे वी वांट टू मेक इट. तो व्हेन आई डिड दैट फिल्म, और फिर उसके बाद ऑफकोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम आई ऑल्सो मेट विद अभिषेक कपूर, हू सेड ही इज डूइंग दिस फिल्म रॉक ऑन, और वो आई फाउंड वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द म्यूजिक एस्पेक्ट ऑफ दैट मूवी. बैंड के बारे में था, उसमें गिटार बजाएंगे, गाने गाएंगे. तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट डूइंग दैट फिल्म एंड देन आई वाज लाइक कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट गो फॉर इट.
1: फरहान की जिंदगी में उनके पिता का काफी इन्फ्लुएंस रहा है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. एक लेजेंडरी राइटर्स की फैमिली से आए फरहान पर शायद उनकी पहली फिल्म से अच्छी राइटिंग का प्रेशर रहा होगा, और वो इस परीक्षा में अपनी हर फिल्म में खरे उतरे हैं. जाते जाते आइए जानते हैं उनके पिता जावेद अख्तर का उन पर इन्फ्लुएंस.
0: नहीं, ऐसा नहीं था कि फिल्म में जो उनका एक नाम है जी, that was something that I think I realized much later in life. But as a child, the only thing that I knew about him for sure was that he's very busy. You know, I think mainly the fact that him and of course Salim Akhtar, when they worked together as a team, especially during those years, I think they had a certain bravado, you know, that they would, the level of confidence with which they wrote their films, and the belief that they have in their ability to create good stories. I think that was something that was very, very commendable. And that they, how they brought the emphasis on not just good writing, you know, because that existed even before them, of course. That, but not only on good writing, but also on the importance of the writer. You know, that somehow how, what a major contribution a good script is, you know, to a film, and how writers should be celebrated. I think that was a great thing that the two of them managed to do. मैंने कभी नहीं सोचा कि क्योंकि मैं किसी का बेटा हूं तो मुझे अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी. यू नो, मैं सच कहूंगा आपसे, ये प्रेशर आप पर सिर्फ आपके पेरेंट्स ही डाल सकते हैं, कोई और नहीं डाल सकता. तो अगर वो आपको ये कभी एहसास न दिलाए कि मतलब एक लीनियज है और एक लेगेसी है जिसे तुम्हें आगे ले जाना है, दे डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन यू, तो फिर देन यू आर नॉट ऑपरेटिंग विद दैट वेट, यू नो. तो ऐसा कभी था नहीं. बोथ माय मदर, हु इज आल्सो वेरी अकॉम्प्लिश्ड राइटर, यू नो, सो हर एज वेल एज माय फादर, यू नो, दे बोथ जोया को और मुझे बहुत आजादी दी उन्होंने कि मतलब तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन जो भी करोगे प्लीज डू इट विद सिंसेरिटी, डू इट विद ऑनेस्टी. हम कोई दबाव नहीं डालेंगे कि तुम्हें फिल्में ही करनी है, ऐसा कुछ है नहीं. बट आई मीन आई थिंक समवेयर दे न्यू दैट my leaning was very, very seriously towards films, and they were always very supportive but without any pressure.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
6: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: आमतौर पर बॉलीवुड में लोग छोटी शुरुआत करते हैं, एज एन एक्टर, सिंगर, स्मॉल टाइम म्यूजिशियन, राइटर, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होते हैं एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये है मेरी कहानी में। आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट है, उन्होंने शुरुआत ही की थी एज अ डायरेक्टर और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते चले गए, उसमें एक्सेल करते चले गए। इन द लास्ट 16 ईयर्स ऑफ हिज करियर इन द इंडस्ट्री ही इज बीन अ राइटर, अ सिंगर, अवार्ड विनिंग एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर, इन शॉर्ट एन ऑल राउंड परफॉर्मर। इनका एक सक्सेसफुल म्यूजिकल बैंड भी है। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से यूथ को इन्फ्लुएंस किया है, जनरेशंस को इंस्पायर किया है एंटरटेनमेंट के साथ। आज मेरे साथ हैं मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड फरहान अख्तर। आइए जानते हैं फरहान की जिंदगी में फिल्म्स की एंट्री कब और कहां से हुई। फिल्मी परिवार में पैदा होने के कारण शायद शुरू से ही फिल्मों के प्रति इनकी इंक्लिनेशन रही होगी।
11: जो माहौल था, मतलब फिल्म के लोग आते थे तो वो बहुत एक्साइटिंग था एज अ चाइल्ड टू गेट टू सी पीपल फ्रॉम मूवीज। लेकिन उसके अलावा वी वर ऑल बिग फैंस ऑफ मूवीज, यू नो, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स। तो हम बहुत सारी फिल्में देखते थे हमारे VHS प्लेयर पर, जो हमारी मेरी माँ की जो बहन है डेजी रानी, उनके पास एक प्रोजेक्टर भी था 16mm प्रोजेक्टर, तो दैट यूज टू बी द हाईलाइट ऑन बर्थडेज। एंड हम बहुत सारे कजिन भी थे, तो द ओकेजंस वर मेनी, तो दे यूज टू टाई वन व्हाइट चादर अप ऑन द वॉल एंड वी यूज टू प्रोजेक्ट मेनी मूवीज ऑन टू दैट। तो मैंने ब्लैक स्टैलिन उस पर देखी है, चैंप देखी है उस पर, लॉरेन एंड हार्डी की फिल्में देखी है उस पर, मैंने उस पर गुमनाम देखी है, मैंने उस पर बंडलबाज देखी है, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी दैट वी यूज टू वॉच एंड इट ऑलवेज बी अ हाईलाइट। सो देयर वाज अ सर्टेन रोमांटिसिज्म, you know, towards films from a very young age.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27। 22 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: राइटिंग तो फरहान को विरासत में मिली थी दादा जान निसार अख्तर और पिता जावेद अख्तर से, पर ये सिंगिंग और म्यूजिक की शुरुआत कब और कहां से हुई, या ये इंडस्ट्री में एंट्री के बाद हुआ किसी रोल की प्रिपरेशन के लिए?
13: मेरे एक मैंने आपको बताया था, एक मेरे मॉम के एक दोस्त हैं जो एक एक्टर हैं, मिस्टर बेंजामिन गिलानी, तो ही यूज्ड टू प्ले गिटार विद मी वकीज, और तब मतलब काफी हमारा पिकनिक्स विकनिक्स पे जाते थे विद माय मॉम एंड हर फ्रेंड्स, एंड इट वाज सो नाइस टू सी हिम, हर शाम को ही वुड ब्रिंग हिज गिटार आउट एंड प्ले अ फ्यू सॉन्ग्स, एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय इट, यू नो, एंड द साउंड ऑफ द गिटार इज समथिंग आई ऑलवेज एंजॉयड। बीटल्स मुझे बहुत पसंद एज अ बैंड, बहुत पसंद है, अब भी पसंद है, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज वांट टू प्ले द गिटार, तो आई थिंक रफली एट अबाउट द एज ऑफ 16 और 17 आई स्टार्टेड टीचिंग माई सेल्फ, और मतलब थोड़ा बहुत एक यू नो व्हेन यू आर लर्निंग एनी इंस्ट्रूमेंट इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर पीपल अराउंड यू, तो इट टुक अ कपल ऑफ इयर्स यू नो टिल आई कुड फिगर आउट लाइक प्रॉपर कॉर्ड चेंजेस एंड प्ले सॉन्ग्स ऑन माई ओन बिफोर आई कुड प्ले फॉर अदर पीपल, बट या दैट वाज समथिंग आई डिड एंड आई नेवर थॉट देन यू नो हु विल लाइक इट हु वोंट लाइक इट, इट वाज मोर फॉर माई सेल्फ एज जस्ट एन आउटलेट ऑफ व्हाट इट इज आई लाइक टू डू, बट इट ऑल केम टुगेदर आई थिंक विद रॉक ऑन इज व्हेन इट ऑल केम टुगेदर, सो आई वाज प्लेइंग अ लॉट इवन बिफोर दैट, आई लर्नड हाउ टू प्ले द एंटायर डार्क साइड ऑफ द मून एल्बम, द एंटायर वॉल एल्बम, जस्ट फ्रॉम डाउनलोडिंग ऑल द कॉर्ड शीट्स एंड एवरीथिंग ऑफ द इंटरनेट, सो आई कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ।
12: फरहान की बचपन की शरारतों की झलक उनकी फिल्मों में भी बखूबी दिखती रही है, फिर चाहे वो दिल चाहता है या रॉक ऑन की दोस्ती हो या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो के किरदार हो। कैसे थे फरहान के स्कूलिंग और कॉलेज डेज, आइए उन्हीं से जानते हैं।
13: मैंने बचपन में मैं काफी एडवेंचरस था एज अ चाइल्ड, दैट मैं हमें मतलब मैं घर में रहता ही नहीं था, मैं जैसे मैं स्कूल से वापस आता था अगर ट्यूशन ना हो तो मैं अपना स्कूल बैग छोड़ देता था, मैं स्कूल यूनिफॉर्म ओनली आई शुड लीव द हाउस, और उस वक्त मतलब मुंबई एक बहुत अलग शहर था, यू कुड रोम अराउंड वेरी वेरी फ्रीली, खासतौर से बैंक स्टैंड पे हम रहते हैं तो वहां पर मतलब ट्रैफिक हार्डली होता ही था, वंस इन अ व्हाइल ऑन बीएसटी बस यू गो पास यू नो ऐसा कुछ था, तो मैं नंगे पांव घूमता था हमेशा बैंक स्टैंड पे, और एक डॉक्टर का क्लिनिक जो हमारी डॉक्टर थी डॉक्टर शाहनी, तो वहां पर शी यूज्ड टू सी मी रनिंग पास्ट एवरी सिंगल डे, एंड शी वुड कॉल अप माय मॉम एंड से यार वो फिर से नंगे पांव घूम रहे हैं तो प्लीज डू समथिंग इट्स नॉट राइट, उसे टेटनिस के इंजेक्शन लगने वाले हैं, ऑल दैट स्टफ, और मैं गिरता पड़ता रहता था, वी यूज्ड टू गो टू बैंड्रा, वो बैंक स्टैंड पे जो फोर्ट है, वी यूज्ड टू गो टू, आई डोंट नो हाउ वी यूज्ड टू डू ऑल दिस, आई थिंक इट वाज क्रेजी, यू नो गो टू द सी साइड एंड देन क्लाइंब अप द फोर्ट फ्रॉम द अदर साइड, ये सारी चीजें

तो मैंने अपने को दो तीन गाने सेट कर लिए थे कि कभी भी इम्प्रोम्प्टू अगर कुछ परफॉर्म करना है सो आई कैन कम एंड डू समथिंग. तो एंड आई वुड लव डांसिंग, आई रियली वुड. मतलब आई वी वर पार्ट ऑफ लाइक अ लिटिल ट्रूप दे यूज्ड टू कॉल एट दैट टाइम. दे वर नॉट इन ग्रुप्स यू नो टू ब्रेक डांस. सो आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट एंड टेक पार्ट इन स्कूल प्लेज, सिंग ऑन स्टेज. आई फील दैट परफॉर्मेंसेस इन स्कूल ओनली अलाउ यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यू नो इट्स वेरी वेरी बिकॉज आई मीन देयर इज अ सर्टेन ऑलवेज. मैंने हमेशा नोटिस किया कि बहुत कम ऐसे स्कूल परफॉर्मेंसेस मैंने देखे कि मुझे लगता है कि यार मतलब क्या शानदार एक लॉरेंस ओलिविए का

0: मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार।

0: गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करें 62052-61112 पे।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अब समय हो गया है समाचार प्रभात का, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
11: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
8: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
12: We have a huge pool of ख्याल है।
13: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
14: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
15: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 177 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
12: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
16: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
16: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
17: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
18: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
19: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
18: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
19: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
18: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9554 97644।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
10: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87894 18744।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
0: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8200

0: जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
11: आप हमें 90.4 FM रेडियो रिमझिम पर सुन रहे हैं और अब समय हो गया है आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का। हम आपको सीधा जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने विकसित होने वाले ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब रैयत राज्य आवास बोर्ड को अपनी जमीन बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से अनुमोदित निजी निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशक भी सीधे रैयतों से भूमि खरीद सकते हैं या लीज पर ले सकते हैं।
1: इसमें ये चूंकि अभी जो रोक लग गई थी, इसके कारण कई सारे लोगों को भूमि विक्रय करने की आवश्यकता थी। अभी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इसको बिहार राज्य आवास बोर्ड उनसे सीधे खरीद सकेगा। आप अवगत हैं कि कुछ दिनों पहले ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि योजना का प्रथम चरण आगामी 15 जुलाई से अगले वर्ष 15 जनवरी तक संचालित किया जाएगा।
1: इसके अंतर्गत जो राज्य में उपलब्ध हेलीकॉप्टर है उससे पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से राजगीर और पटना से कैमूर जाने के लिए और साथ ही साथ पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10-10 सीट उपलब्ध हैं प्रति सप्ताह और इसकी राशि भी निर्धारित की गई है। जैसे पटना वाल्मीकि नगर के लिए प्रति यात्री किराया 5,000 है, पटना कैमूर के लिए 6,000 है, पटना राजगीर के लिए 4,000 है और जॉय राइड जो 10 मिनट का होगा उसके लिए 2100 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है।
0: श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लद्दाख स्थित सिंधु नदी दर्शन के लिए राज्य के मूल निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना को मंजूरी दी। इसके तहत तीर्थयात्रियों को यात्रा पर हुए खर्च का 50% या प्रति यात्री 20,000 रुपए जो भी कम हो प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कला और संस्कृति विभाग के तहत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति के गठन और इसके निबंधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 500 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से यातायात की निगरानी की जाएगी।
1: इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु बिहार सड़क सुरक्षा निधि से कुल 622 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत PPP मॉडल के आधार पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें ANPR कैमरा इत्यादि भी रहेंगे और यह अपेक्षा की जाती है कि इसको लगाने से लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन और बेहतर तरीके से करेंगे। यह अनुमान किया गया है कि लगभग इससे जो दुर्घटनाएं हैं उसमें 22% की कमी होगी।
0: कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च तक इसकी वैधता समाप्त हो जाती थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सीवान और गयाजी में ये सेवा केंद्र खोले गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अंचल स्तर पर चलाया जा रहा विशेष अभियान अब 21 जून तक चलेगा। इसके तहत राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त 40 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य में ट्रॉमा सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नव नामांकित 5000 गृह रक्षकों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की महानिदेशक शोभा ओहटकर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के फ्यूल फिलर कैप के आसपास चीटियां जमा हो रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा झूठा है और E20 ईंधन को चीटियों के आकर्षण से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यूनिट ने कहा कि E20 ईंधन में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होता है जिससे चीटियां या अन्य कीड़े वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा हों। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून अब भी कमजोर बना हुआ है, हालांकि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं अररिया, किशनगंज और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए कल आयोजित परीक्षा में 37 अभ्यर्थी कदाचार में संलिप्त पाए गए। इनमें से 28 को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सबसे अधिक दरभंगा में 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिहार पुलिस ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को तय मापदंड के अनुसार सुरक्षा दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार पुलिस ने कहा कि वर्तमान में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को अलग अलग अंगरक्षक, आवास कार्ड, एस्कॉर्ट कार्ड और पायलट के अतिरिक्त बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सादे लिबास में भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। भोजपुर के शाहपुर में पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल तानने वाले युवक की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि युवक पुलिस पर रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, इस दौरान युवक के पैर में गोली लगी। पीएमसीएच में इलाज के क्रम में युवक की मौत हो गई। मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जाता था। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। वहीं पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का स्थापना दिवस भी आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी समारोह में शामिल होंगे। पूर्व विधायक अंबिका यादव का निधन हो गया। वे कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। राजगीर मलमास मेले में इस बार 3,82,00,000 श्रद्धालु पहुंचे। मेले की समाप्ति पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी श्रद्धालु राजगीर पहुंचे और ब्रह्मकुंड समेत अन्य पवित्र कुंडों में आस्था की डुबकी लगाई। नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सम व शरण मंदिर के पास एक बस में करंट दौड़ने से एक दंपति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य झुलस गए। वहीं जिले के तिलहाड़ा थाना क्षेत्र के गंगापीघा पुल पर एक मोटरसाइकिल और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भू अर्जन कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक आकाश को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उसे पिछले दिनों 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। सुपौल जिले के भपटियाई थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा खुर्द गांव से पुलिस ने 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, राज्य में पीपीपी मोड पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी, कैमरे से 500 स्थानों पर यातायात की निगरानी। दैनिक जागरण ने लिखा है, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री को मिली छूट। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, अगले माह से हर प्रखंड के सरस्वती विद्यानिकेतन में पढ़ाई। दैनिक भास्कर लिखता है, कॉलेजों में पढ़ाई के साथ नौकरी, 12,300 का स्टाइपेंड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पटना टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा। आज अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। और मौसम विभाग की आज भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी। उत्तर पूर्वी जिले अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम, RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
13: सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
13: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
13: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्ते मैडम जी, बहुत इंतजार कर रहे रवन।
1: अच्छा, नमस्ते,
2: कैसे हो मैडम जी?
1: मैं
2: अच्छा है ना?
1: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा।
1: भोजन हो गया आपका?
2: हाँ हो गया, मेरा तो हो गया ना मैडम जी।
1: हाँ हाँ, मेरा भी हो गया है।
2: सॉन्ग
1: कौन सा?
2: धीरे धीरे प्यार से बढ़ाना है,
1: और ये सॉन्ग डेडिकेटेड भी है
2: आपको। जितना रहे हैं
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
2: जी मैडम जी, सब बढ़िया।
1: जी जी बिल्कुल रहेंगे, ताकि आप लोग की रिकॉर्डिंग चलती रहे और हम आप लोग की फरमाइश के सॉन्ग बजाते रहे। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रेंजन 90.4 FM।
2: जी मैडम जी, नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: जी मैं सुनील साबरी बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
0: जी जी कैसे हैं आप
1: भैया? रिमझिम सुन रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: हमारे एक मित्र विशाल साहू और उसकी फरमाइश है बहन जी, उसका नाम है दूध का कर्ज
0: जी,
1: और गाने के बोले शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
0: ओके, और सब बढ़िया है?
1: हाँ और बढ़िया है दीदी, धूप निकल रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तवालीस वगैरह दे रही है। हमारे आपके बिहार में कैसा मौसम है?
0: अभी तो मौसम हल्का हल्का धूप खिला हुआ है और हल्की हवा चल रही है।
1: अच्छा,
0: मौसम मतलब ठीक है।
1: और कुछ दोस्तों का नाम मैं बताता हूँ जिनको ये लड़ना डिटेड है।
0: जी जी बता दीजिए।
1: अपने गजरात में लोधी है, मानीला में ढाका में बड़ा गाँव से, गोपाल ओझा है तकवासा से, और गोलू साहू है बड़ौदा से। और ये गाना आपको भी डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
10: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
9: तो देर मत कीजिए,
10: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी, गाना सुनना था।
16: जी, नाम बता दे अपना।
15: ज्योति कुमार बादल है, जिला भागलपुर, तिरुपति ग्राम प्रसन्ना।
16: अच्छा जी, क्या हाल है आपका?
15: ठीक है।
16: तबीयत कैसी है आपकी?
15: तबीयत तो भी ठीक है।
16: भोजन हो गया है?
15: हाँ, भोजन तो हो गया।
16: अच्छा, तो बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
15: वही गाना सुना दीजिए, टिप टिप बरसा पानी।
16: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
15: आप ही के आप ही को रहेगा और जितने भी लिसनर है।
16: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी क्या कुमार बोल रहा हूँ, चिंतापुर से।
1: क्या हाल है आपका?
0: बढ़िया है जी, आप बोलिए, आपका क्या हाल चाल है?
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: मैडम आपका नाम क्या पड़ेगा?
1: मेरा भारती पड़ेगा।
0: आज फरमाइश सजा दे दिए मैडम मेरा, वो खिड़की वाली वाली।
1: खिड़की वाली
0: बहुत फेवरेट गाना है मेरा।
1: अच्छा, पुराना सॉन्ग है क्या?
0: पुराना सॉन्ग है।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: मेरे दोस्तों और रेडियो रेंजर सुनने वाले हैं, रेडियो रेंजर वाले आए हैं, उन लोगों को सबको सुनवाना चाहते हैं।
1: अच्छा,
0: ये कितना बजे से बजाइएगा आज मैडम? ये वाला गाना बजाइएगा,
1: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंजर में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत

0: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
6: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
10: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
11: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
10: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
11: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
11: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते,
13: हम घासीराम बाराबंकी से बोल रहे हैं मैम।
14: जी जी, क्या हाल है आपका?
13: हाल चाल मैम बढ़िया है।
14: तो क्या हो रहा है अभी?
13: अब घर काम वाम खत्म करके थोड़ा बैठे हैं छांव में, बदली है तो एक गाना सुनवा दीजिए।
14: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग?
13: वो गाना है ना, दुनिया से दूर जा रहा हूँ माँ तेरे पास आ रहा हूँ।
14: डेडिकेटेड भी है
13: जी, हमारे राकेश भाई, संजू भाई है, पूर्णिमा से दादाजी और राजकुमार भाई हैं।
14: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। चलिए रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: आदम जी, डॉक्टर जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बहुत पहचान रहे हैं, कुमार मित्रा दिल्ली से। चलिए, और सब
1: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ, आप लोग?
1: हाँ हाँ, हम सब भी ठीक हैं।
0: बस आप लोग ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेंगे। सोनी जी आ गए?
1: जी, सोनी जी भी आई हुई है।
0: आई है तो चलेगी, ये कन्फर्म हो जाता है की सोनी जी आ गई है तो चलेगी। तो
1: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: आगे गाना है रोहित प्रधान का, ज्ञान के दाम ना लगी।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सोनी जी को, भारती जी को, नया मैम मनोरमा जी आए हैं उनको भी।
1: हाँ,
0: जितना सारे लिखना सुनने वाले हैं, मेरे नाम पहचानने वाले हैं सब सुनेंगे, किसका किसका नाम लिया जाए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: थैंक यू मैम, सब सुना देना।
1: ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रमजन 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो विक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: क्या हाल है?
12: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
13: मेरे भी बढ़िया है। पहचान रहे क्या? मेरा नाम गणेश कुमार, टीके नारायण से।
12: अच्छा,
13: आप सब बताइए, सब बढ़िया है?
12: हाँ हाँ, मेरा बढ़िया, आप अपना बता दीजिए।
13: मेरा भी बढ़िया है।
12: भोजन हो गया है?
13: खाना तो हो गया है, अब दूसरा बार खाएंगे। 12 दिन हो रहे हैं तो क्या करेंगे।
12: हाँ हाँ, जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए, खाने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
13: हम घर के भरोसे नहीं रहते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वहीं पे खा लेते हैं।
12: सब तो बढ़िया है।
13: आप खा कर आए हैं?
12: हम भी खा के ही आते हैं और लंच भी लाते हैं।
13: चलिए बढ़िया है, और सब बताइए।
12: मैं सब बस काम हो रहा है अपना अपना। आप बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
13: सॉन्ग सुनना है ये बजा दीजिए, खेसारी लाल की आवाज में राजा पायल उतारता आवाज करता।
12: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
13: आपको है, दिव्या मैम को, सोनी मैम के है, पूरा पूरा रेडियो रंजन लोग का है, मेरे बहन है करिश्मा के भी है, और सऊदी अरब में जो मेरे भाई है उन लोग का भी है, अफसर सर सऊदी अरब में है उनको भी।
12: ओके,
13: अपना डायरेक्टर सर को भी।
12: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: हम थाने से राजा महामारी प्रसाद।
1: कैसे हैं आप?
0: ठीक है, आज दिन निमन होता है, हवा लगा रहे में। हाँ, सुने बात उड़ के पिंजरा चिड़ैया तो उड़ गई।
1: अच्छा, और इस सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, जितना लोग सुनते सब कुछ सुनिए, हम सुने।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सुने। हाल चल रहा हो? ठीक है ना?
0: हाँ, हाल चल रहा ठीक बा।
1: क्या होता अभी
0: दुकान?
1: गाना से
0: नमस्ते।
1: नमस्ते जी, सुना।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: नमस्कार
13: भारती
14: जी, गाना सुनना है,
13: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
14: आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, पूरी अखंड के चमकाने वाले
13: ये, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? क्या हाल चाल है आपका?
14: बढ़िया है।
13: क्या हो रहा है अभी?
14: अभी बैठ के रेडियो सुन रहे हैं।
13: अच्छा बढ़िया है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM। चूड़ी

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
1: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे फोन लगाते हुए, मैं बहुत मुश्किल से अभी तो फोन मिला है मैम, तो बस बैठे थे रेडियो रंजन का इंतजार करते हुए मैम। और मैम हमारे यहाँ तो बारिश चालू है मैम, आपके वहाँ क्या कैसा मौसम है अभी?
1: मेरे यहाँ तो कल का बारिश हुआ है, आज अभी मौसम
0: जी जी जी जी मैम
1: चलिए बढ़िया, आपके यहाँ बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया होगा।
0: जी जी जी अभी तो ठंडा ही है मैम, बाकी अभी बारिश तो चालू नहीं है मैम, बाकी थोड़ा हल्का फुल्का बीच बीच में हो रहा है मैम। जी मैम तो बैठे थे तो आज एक गाना है मैम, गाने पे बोल है, जो भी कसम खाई थी हमने, यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते थे।
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
0: जी जी ओके मैम, बस ठीक है बैठे है मैम, अभी तो नाश्ता हुआ मैम, खाना अभी बाकी है मैम, आपका हुआ मैम नाश्ता? आपका
1: जी नाश्ता हो गया है।
0: जी जी जी जी मैम तो गाना फिर सुनवाइयो। ओके मैम,
1: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: सोनी जी है आप?
16: नहीं।
15: हाँ, मैं असम से महेंद्र राउत बोल रहे हैं।
16: कैसे हैं आप?
15: हाँ हाँ ठीक है, आप लोग?
16: हम सब भी ठीक है।
15: वहाँ का तो गर्मी ज्यादा है वहाँ पर
16: जी, अभी तो मतलब कल का बारिश हुआ है तो अभी ठीक है मौसम।
15: असम में तो बारिश होते रहता है, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अच्छा है। हमको एक भोजपुरी गाना सुनना था।
16: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
15: गंगा किनारे मोर गांव ऐसा कोई फिल्म है ना भोजपुरी में
16: जी,
15: उसी का कोई गाना सुना, कोई भी उसमें का अच्छा गाना एक भोजपुरी सुना दीजिए। हमारे साथ है अनुज कुमार, शशिकला, सुनील, अनिल, प्रेम कुमार और आप है और श्रोतागण।
16: ओके
15: ठीक है, धन्यवाद।
16: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो रंजी 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेगुलेशन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ, नीतीश कुमार माझी बोलता है, थोड़ा सा प्रतिवाद दिया।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, आपका जो आप अपना बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: मैंने गाना सुना दे।
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
0: आवाज में जान चाहता हूँ नाम
1: जी, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपका सुनाना चाहता हूँ फरीदा जी के, राजेश के, सब कोई के, अरिंदम को। ठीक है, मैंने ये गाना फरीदा जी को डेडिकेट
1: किया। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
17: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
3: हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
19: जी मैडम, मैं झारखंड का गोड्डा जिला से बोल रहा हूँ मैडम। मेरा बसंतराय प्रखंड है, रामपुर गांव है। तो मैं आपका रेडियो बरकरार हमेशा सुनते रहता हूँ मैडम
3: जी।
19: तो कुछ एक सॉन्ग लगा देना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
19: रेडियो रिमझिम में लगा है ना मैडम?
3: बता दीजिए।
19: हमें तुमसे प्यार है।
3: हमें तुमसे प्यार है सॉन्ग, किसी मूवी का है क्या?
19: नहीं, नॉर्मल सॉन्ग है।
3: ओके, एल्बम सॉन्ग है?
19: हाँ, एल्बम सॉन्ग है मैडम।
3: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
19: जी मैडम।
3: बता दीजिए।
19: स्पेशल मेरे वाइफ के लिए डेडिकेटेड है
3: जी।
19: मेरा वाइफ का नाम पूजा है मैडम, उनके लिए खाली स्पेशल है। वो भी सुन रही है इसीलिए बोल रही हूँ।
3: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
19: थैंक यू मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिद्धिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं पप्पू ठाकुर रामदास बोल रहा हूँ, जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, क्या हाल है आपका?
1: बढ़िया है जी, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो बताइए, आज का मौसम कैसा है?
1: बहुत गर्म है, बहुत गर्म है।
0: गर्मी तो है,
1: 37-38 चल रहा है डिग्री तापमान है। बोल रहे एक सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है, तो क्या नाम है उसका? फिल्म का ना अमिताभ बच्चन का फिल्म है जो रवि, रवि का कोई एक गाना सुना दीजिएगा।
0: अच्छा, गाने का नाम नहीं याद है?
1: हाँ, रवि के कोई एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। महफिल में जो गाना होता है ना साथ में, सीना राय भी है जो साथ, कोई वाला गाना सुना दीजिएगा। मुझे 9 लाख मंगा दे, सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: ओके ओके,
1: थैंक यू।
0: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर

0: क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हाँ जी, मैं राम राव से बात कर रहा हूँ।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: गाना सुनना चाहते हैं पवन सिंह का, टाट दही कैसे संगतिया पुरान हो।
5: जी,
6: टाट दही कैसे संगतिया पुरान हो।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: हाँ, सभी रेडियो रंगीन के श्रोता।
5: तो तबीयत कैसी है आपकी?
6: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त है।
5: ओके, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंगीन। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इस पे मैंने गाया था
1: तो निजा जय बदरा तू चली जा सुनी ने जो तेरे

हम पहले

0: की प्यार हो गई।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है, अपना बताइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
3: खाना खा ली?
2: जी जी, मैंने खाना खा लिया है। और आपने?
3: मैंने भी खा लिया।
2: तो क्या कर रही हैं अभी?
3: कुछ नहीं, सोई हूँ।
2: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
3: आपका पसंद का कोई थी?
2: मेरी पसंद का? आप अपना पसंद नहीं बताएंगी?
3: नहीं, आज अपने मन से बजा दीजिए।
2: हिंदी सॉन्ग सुनेंगी या भोजपुरी?
3: हिंदी।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
3: आपको?
2: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करूं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
10: जानकारी के लिए कॉल करें 99 55 94 94 53
8: और 90 97 61 60 02।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: हाँ नमस्कार मैडम।
13: नमस्कार,
12: मैं संतोष जिला गोपालगंज से बोल रहा
13: हूँ जी। क्या हाल है आपका?
12: बढ़िया है मैडम।
13: तो क्या हो रहा है अभी?
12: अभी तो मैडम घर से नहीं हूँ, उड़ीसा में ड्यूटी हो रहा है। गाड़ी चलाते थे बैठे हैं।
13: बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी?
12: भाई होला तो बैठे और
13: आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बोल
12: दो। भोजपुरी सॉन्ग है भाई होला है, वो भोजपुरी सॉन्ग।
13: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
12: हाँ, वो है अर्जुन है राहुल है, इन सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
13: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
1: बुलेट कुमार
0: जी, क्या हाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, आप ना बताइएगा।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
1: आजकल काम हो रहे हैं घर पे।
0: चलिए बढ़िया है। भोजन हो गया है तब?
1: हाँ भोजन हो गया है।
0: ओके, तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
1: यस मैडम, गाना सुनना चाहते हैं।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: हिंदी सॉन्ग।
0: गाने का नाम बता दीजिए मुझे।
1: नैनो में महबूब का।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: अपने दोस्तों का। जी अपने दोस्तों का।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470 34468 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97714861.
2: ठक ठक।
3: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है, गोद में बैठा लो बच्चे का क्या।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क 99393 65 93।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89693।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में।

0: आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री सीढ़ी।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम आपका अपना सो योर वॉइस योर चॉइस का। 12:04 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। तो और उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और जो भी व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं यूज करते हैं आप लोगों के लिए कॉल का माध्यम है, नंबर है 7277-16-65-96 पे कॉल करिए और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना। तब तक आप सभी मैसेज करिए, अपनी फरमाइशों को भेजिए, तब तक एंजॉय करते हैं इस गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 下集干嘛？
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो टनजीम 90.4 FM में आपके अपने पसंदीदा सो योर वॉइस योर चॉइस में। 12:08 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और अगर आपको भी शो में जुड़ना है, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और अभी से 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेज पहुँचे हुए हैं और इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेज पहुँचे हुए हैं। मेहताब सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, हेमंत राय जी हैं, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। भागलपुर जिले से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, और लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े और आगे बढ़ेंगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो यहाँ भी मैसेज है, और आज अफसर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सन्यासी रंजन बाबा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं। सोनी मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है। धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि आज का ओपनिंग सॉन्ग सुपर हिट सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि आप आई बाहर आया और कैसी हैं आप बताइएगा। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ इरशाद मास्टर जी जुड़ चुके हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। शमशेर जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं लोहा नमस्ते नमस्कार प्रणाम जय माता दी, और सबको बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं, कैसे हैं आप। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और शिशागर दीवाने जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। अनिश यादव जी जुड़ चुके हैं दुमरा यदवंशी टोला सिवान से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, राम कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। दरभंगा जिला से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश के साथ है, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं की है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, और लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी, देवराज कुमार रेशम नगर बघेया जिला गोंडा झारखंड से, और रेडियो रिमसिन सभी दोस्तों को मेरे तरफ से राधे राधे बोल दीजिएगा। और आज बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, आज मुझे भी गाना सुनना है और मेरी भी फरमाइश है, तो एक गाना सुना दीजिएगा। और गाने की फरमाइश है धूप में निकला न करो रूप की रानी, और आज मुझे ये सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिए। और सुनवाना चाहते हैं आपको, और रेडियो रिमसिन सुनने वाले सभी दोस्तों को डेडिकेट है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत। संजय यादव जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, और रामविलास प्रसाद हैं कीर्तपुर बगहा पूर्वी चंपारण बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश ठीक करने की पूरी कोशिश है। बढ़ेंगे आज की पहली फरमाइश की तरफ, और पहली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है शिव सागर दीवाना जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, और उनको सुनना है गाना। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश है मेरे दिल ने किया तुझको लाखों सलाम। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमसिम 90.4 FM को।

0: 90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे शिवसागर दीवाना जी जमीन कश्मीर से और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए और यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे मैसेज है। और धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है प्ले कर दीजिएगा और डेडिकेट है मेरे भैया भाभी रवि और सभी सुनने वाले रेडियो दोस्तों के लिए भी डेडिकेट है। तो चलिए आपकी भी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज है आरजे अफसर अली जी के कलम से लिखी हुई शायरी है और लिख रहे हैं कि ना चांद रहेगा ना सितारे रहेंगे, देखना हम फिर भी तुम्हारे रहेंगे, ये फासले ये दूरियाँ कुछ भी नहीं, हम तो एक दूसरे के सहारे रहेंगे। मोहब्बत हमारी ना होगी कभी कम, गिले शिकवे बेशक सारे रहेंगे, तुम रूठती रहो हम मनाते रहेंगे, यूं ही जिंदगी की ये नज़ारे रहेंगे। अपने भी कदमों को मिलेगी मंजिल, कब तक हम किस्मत के मारे रहेंगे। और आगे लिखते हैं कि अफसर ये मौसम भले ही बदल रहे हैं मगर हम तो हरदम तुम्हारे रहेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आरजे अफसर जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नमस्कार मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। और सगीर आलम अंसारी हैं तेजपुर आसाम से, बिल्कुल आपकी हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: सोनी जी,
0: जी सोनी जी ही बात कर रहे हैं।
1: मैं कृष्णा जी बोल रहा हूँ
0: जी, कैसे हैं कृष्णा जी?
1: ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ,
1: चलिए माई का कृपा है, अच्छा रहे।
0: तो और सब बताइए जी। जी बता दीजिए नाम गाने का,
1: नाम फिल्म का। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है
0: जी। और डेडिकेट भी रहेगा,
1: सबसे पहले तो आप तो रहेगा
0: जी,
1: और पूरा रिमझिम परिवार टीम को, और हमारे रामा जी भाई थाए वाले हैं उनको, मनान भाई हैं कहाँ बोलते हैं कपरपुरा वाले को, मनान भाई तो बोलते हैं तो हमेशा लगता है कुछ खाते रहते हैं क्या।
0: अब पता नहीं, अब उनका आवाज ही वैसा है,
1: आवाज ही ऐसा है क्या?
0: अब पूछना पड़ेगा, बात होगी नेक्स्ट टाइम तो पूछेंगे, या फिर सुन रहे होंगे तो वो खुद ही बता देंगे।
1: तो जरा पूछिएगा
0: जी। जी बिल्कुल,
1: क्योंकि जब भी उनका फोन कॉल आता है तो लगता है कि कुछ खाते ही रहते हैं, तभी बात करते हैं आप।
0: सुन रहे होंगे तो खुद ही बताएंगे। चलिए तो गाना प्ले कर दे आपकी,
1: करिए।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया,
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9493045651 या 97-0-97-06-575।
4: रेडियो रमजिम 90.4 FM सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, जहाँ की आपके संदेश है और आपके शानदार गीतों की फरमाइश सजाती है इस महफिल को। तो आपके इस शानदार सफर में आज हम बात करेंगे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। आज का हमारा खास विषय है गर्भावस्था और उससे जुड़ी जरूरी कुछ बातें। तो आप सभी सुनते रहिए रेडियो रंजिम 90.4 FM, फिर करेंगे आपकी फरमाइशों के बाद आप सभी से मुलाकात और कुछ उपयोगी जानकारियों के साथ आपसे करेंगे बात।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ अपना रुख करेंगे और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दीजिए हैं। और महबूब आलम जुड़े हुए हैं केवला कटिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल जी जुड़ चुके हैं छोटपुर से, लिख रहे हैं कि समस्त मासूम भावनाओं के अंत होने के बाद शुरू होता है वास्तविक जीवन। और इस टच के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ, आज मेरा भी 7 दिन हो चुका है और मेरे भी गाने की फरमाइश है, भेज रहा है, बिल्कुल भेजिए। और मैसेज करने वाले अनिल जी छोटपुर से, साधु राय जुड़ चुके हैं छपरा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि मनान भाई तो पान के शौकीन है और पान खा रहे होंगे। जी हाँ, पता नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता कि वो किस चीज़ के शौकीन हैं। और यहाँ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और गाने की फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, प्रमुख जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, बहुत ही खूबसूरत गाना और जिनकी भी पसंद है लाजवाब सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं आरजे अफसल जी और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश है, तो चलिए आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और आप सभी एंजॉय करिए आरजे अफसल जी की फरमाइश को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो रिमझिम 90.4 सुंदर है। सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि अफसर अली का नमस्कार है, सलाम है और गुड आफ्टरनून है। कैसे हैं साथियों, आप सब ठीक हैं? आज मुझे भी इस शो से जुड़ने का मौका मिला है तो मैं सोचा कि जुड़ जाऊं। और आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल मैं दुबई से जुड़ा हूं इस कार्यक्रम में, और जब जुड़ा हूं तो एक गाने की फरमाइश मेरी भी है। इस गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है, काफ़ी खूबसूरत गाना है। आप सभी इस गाने को सुनें और रेडियो रिमझिम को ऐसे ही सुनते रहें। खासकर ये गाना सभी श्रोताओं को डेडिकेट है, सोनी जी आपको भी है, और आप भी बताइएगा कि गाना कैसा लगा।

0: हमारे गाने को प्ले करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन है, शायर कहता है कि चेहरे देखकर दिल लगाया ही नहीं कभी, चेहरे को देखकर दिल लगाया ही नहीं कभी, हाँ मुस्कुराहटों पर तेरी कई बार हमने जान लुटाई है। तो फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं निकलता हूं।
1: नब्बे दशमलव चार रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे आरजे अफसर जी की फरमाइश थी, और वाकई काफ़ी खूबसूरत गाना था। वैसे तो गाना मैं पहली बार सुनी हूँ, और आज से ये गाना मेरे प्लेलिस्ट में सेव रहेगा। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आरजे अफसर सर को मेरे तरफ से सलाम कहिएगा। बिल्कुल बोल दिया, और मैसेज करने वाले हैं सगीर आलम अंसारी जी तेजपुर असम से, और लिख रहे हैं कि आपकी याद बहुत आती है। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अफसर जी आपका सॉन्ग लाजवाब, और आपको मेरे तरफ से नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपका आवाज़ सुनने मिला, बहुत ही अच्छा लगा। देवराज कुमार रेशमनगर बगैया जिला से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अफसर सर जी बहुत बहुत मिस करते हैं आपको। और मैसेज करने वाले हैं एमडी नौशाद जी लालगंज वैशाली से। और आगे यहाँ मैसेज है सन्यासी रंजन बाबा जी का, लिख रहे हैं कि अफसर अली जी आपको मनीष पांडे जी बहुत याद करते हैं, और गांव रूप छाप वाले, और हम भी आपको बहुत याद करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचा है, लिख रहे हैं कि नाइस सर जी। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से। और आगे यहाँ एक कविता पहुँचा हुआ है, और प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि आरजे सोनी जी आपकी प्रस्तुति कमाल करती है, हर धड़कन में नई उमंग और खुशहाली करती हैं। आपकी मधुर आवाज़ दिलों को छू जाती है, हर महफिल को अपनी बातों से निहाल करती हैं। मुस्कान बिखेर कर सबका दिन सवार देती है, आपके अंदाज से हर पल यादगार कर देती हैं। और आरजे सोनी जी आपकी कला का जवाब नहीं, आपकी प्रस्तुति सच में सबको खुशहाल कर देती है। और इस प्यारी सी कविता को भेजने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से। रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत आपका। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है दिल्ली से धनेश मिश्रा जी को, और उनको सुनना है गाना। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: सोनी मैम वादे पर कायम रहे, थोड़ी ही गुनगुनाए मेरे गाने पे, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: तो चलिए दोस्तों, गाने तो बहुत सुने आपने, लेकिन हम बात कर रहे थे आज सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत गर्भावस्था से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। तो यहाँ हमारे पास सवाल है कि गर्भावस्था के शुरुआत में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, गर्भावस्था की जानकारी मिलते ही सबसे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और समय पर जांच करवानी चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना, पर्याप्त पानी पीना, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना, पर्याप्त आराम करना बहुत ही जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही धूम्रपान, शराब और तंबाकू जैसी हानिकारक चीजों से दूर रहना चाहिए। परिवार का सहयोग और सकारात्मक माहौल भी माँ और शिशु दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, गर्भावस्था के दौरान छोटी छोटी सावधानियाँ माँ

0: शिशु के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ, आप सभी के साथ।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और अभी अगर शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 7277166696 पे। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेजर लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, बेगूसराय बिहार से जुड़े हुए हैं केशव राज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हाय सोनी मैम जी, आज हमारे प्यारे आरजे अफसर सर जुड़े हुए हैं और उनका प्यारा आवाज़ सुने प्रोग्राम में सुनकर दिल बाग बाग हो गया। और अफसर भाई से निवेदन है कि आप कभी भी रहे हमारे शो में, कुछ समय देकर अपनी भी मीठी आवाज़ हम तक पहुंचाइए। और आगे लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है, सभी श्रोताओं को तंगी बनी रहती है, प्लीज़ क्या आइए कभी शो में अफसर भाई। और मैसेज करने वाले हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र जी और बाकी और लिसनर से भी मेरा कहना है कि अगर आप लोग जब भी कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हैं तो एक बार अपना टाइप किया हुआ मैसेज पढ़ लीजिए फिर सेंड किया करिए। काफ़ी सारे मैसेज जो होते हैं मिस्टेक होते हैं जिससे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप एक बार मैसेज खुद पढ़ लीजिए फिर सेंड किया करिए। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आरजे अफसर जी को मैं भी सुना हूँ पर उनका भी समय समान है मेरे दिल में, और बट आरजे सोनी जी किसी से कम थोड़ी हैं। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि और आप अच्छा गुनगुनाई सुनकर मज़ा आ गया, सगीर आलम अंसारी है तेजपुर असम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ थैंक्स का मैसेज पहुँचा हुआ है गाने की फरमाइश के लिए। उमा शंकर मिश्रा जी है दिल्ली से। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से। इशाद मास्टर जी हैं लिख रहे हैं कि हो मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्याले सुपर सॉन्ग, और आप वहाँ से गा रही हैं हम यहाँ से गा रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं इशाद मास्टर जी धनाव से। चलिए बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप वहाँ गाइए और हम यहाँ गा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा वो दिल तो कभी का तोड़ दिया, बदनाम ना होने देंगे तुझे इसलिए तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया। और मैसेज के साथ हैं मुकेश करवार जी हिमाचल प्रदेश से। और हाजिरी की बात है तो बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो दीपक गोस्वामी जुड़े हुए हैं और उनका सुनना है गाना मेरे यार हंस रहा है बारिश की जाए। और आगे यहाँ दिनेश अवानी जी जुड़ चुके हैं झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो चलिए दीपक जी आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। अगर यार के हंसने से बारिश होती है तो भाई सब अपने अपने यार को बोलिए कि हंसे, क्योंकि बारिश की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ।
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी, तो दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है।
2: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।

0: 94.4 रेडियो रमजान सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी दीपक जी की फरमाइश सुन रहे थे और यहाँ मैसेज है लिखे हैं कि मेरा गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ कुछ व्हाट्सएप मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि हेलो मैम कैसी हैं आप, और गाना सुना दिए तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। नाम है इनका प्रभु जी, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत ही गर्मी है इसलिए आपके लिए सेंड कर रहा हूँ, वैसे भी आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पसंद है, और वैसे भी गन्ना का भी जूस मुझे काफ़ी ज़्यादा तो पसंद नहीं है, पी लेते हैं पर जूस पीने से ज़्यादा मुझे ऐसे ही खाना पसंद है उसको। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, आगे यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है और नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है कहाँ से और आपकी फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो मैम मुझे भी सॉन्ग सुना सकती हैं क्या? बिल्कुल सुनवा सकते हैं, और गाना सुनना है शक्ति जी जुड़े हुए हैं तो भेज दीजिए अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए या फिर गाने की नाम और लिख के भेज दीजिए। एक और यहाँ मैसेज लिख रहा है कि सोनी मैम आपसे निवेदन है कि प्रमुख जी का कविता एक बार फिर से सुना दीजिए प्लीज़। और धनीश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, ठीक है फिर से कोशिश करते हैं, मिलता है कि किधर है उनका, कहीं इसी में गुम हो गया तो आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देंगे। और आगे बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं और सुनते हैं कौन है कहां से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: कैसे मैडम जी?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं अच्छा हूँ। नाश्ता हो गया?
0: जी नाश्ता हो गया, अब तो लंच का टाइम हो गया है, आप बताइए।
1: ठीक है, ठीक है।
0: मैं भी बढ़िया हूँ, बताइए आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: सब अच्छा
0: है। चलिए तो गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: गाना सुना दी पटना रेफर कैले बा जाए दी संगरिया जहरवा कैले।
0: ओहो सच्चो बात बा का।
1: गाना
0: तो चल ले बा, और गाना डेडिकेट भी रही
1: आपको जितना रेडियो रिमझिम
0: आज दे सुत जो अपना। चलिए नाम भी बता दीजिए।
1: हाँ,
0: हाँ, बोल से। चलिए तो गाना प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपना गाना
1: जी। मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो 90.4 FM पे। और आज हम बात कर रहे थे सेहत सही लाभ के अंतर्गत गर्भावस्था के बारे में। उनसे जुड़ी कुछ जानकारियों के साथ आप सभी के बीच हाजिर है। और हमारे पास दूसरा सवाल है, गर्भावस्था के दौरान किस तरह का भोजन माँ और शिशु के लिए फायदेमंद होता है? तो श्रोताओं, गर्भावस्था के दौरान संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत ही जरूरी होता है। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, दूध और दूध से बने पदार्थ, मौसमी फल, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी भी जरूरी है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां भी लेना माँ और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु की नींव होती है। तब तक मिलते हैं आप सभी से, आप सभी सुनते रहिए रेडियो रुमसिम 90.4 FM, अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस को।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9474-34468 पे।

0: ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और 1:07 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और हाँ, अगली फरमाइश इंस्टाग्राम पे भी पहुंचा हुआ है, दिनेश रवानी जी हैं, तो आपकी भी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। मैसेज है, लिख जाएंगे क्या सुनी है, मेरा फरमाइश शामिल नहीं करिएगा, बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है शामिल करेंगे, नेक्स्ट फरमाइश आपकी रहेगी। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका और नाम अपना मेंशन किए ही नहीं है, नाम पता जरूर मेंशन करिए आप कौन है, कहाँ से। और आगे यहाँ है कि सोनी मैम गोपालगंज से, सॉन्ग का बोल है क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं। ओहो, सोनी गोपालगंज से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए, आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। यहाँ राजू सोनी जुड़ चुके हैं, हरपुर से लिख रहे हैं कि सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे आज की अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है रामविलास प्रसाद कुशवाहा है, कीरतपुर बगहा पूर्वी चंपारण बिहार से, और उनको सुनना है गाना। वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो नमस्कार, मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, कीरतपुर बगहा पूर्वी चंपारण बिहार से। आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हंसते जख्म और गाने का बोल है ए माना मेरी जा मोहब्बत सजा है। और यह गाना सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त लोग संजय शाह जी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उर्फ विकास, अभय कुमार, सुदीश कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, सोनू कुमार कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सुजमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ। धन्यवाद।

0: सोनी जी, मेरा फरमाइश है, गाना बजा दिए, जिसके लिए आपको दिल से लाखों लाख धन्यवाद। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा, कृतपुर बगहा, पूर्वी चंपारण में अपनी फरमाइश का गाना सुन रहा हूँ। धन्यवाद।
1: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, सोनू निगम के आवाज़ में गाने की फरमाइश थी रामविलास प्रसाद जी की तरफ से। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस नींद पूरी नहीं होती। और जी हाँ, ये बात तो है, और ये शिकायत मेरी तरफ से भी है कि नींद पूरी नहीं होती, ऐसा क्यों है। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ लिख रहे हैं कि सोनू मैम मेरा गाना, बिल्कुल आपका भी गाना प्ले करेंगे, आपकी बारी आती ही। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है वॉइस के माध्यम से, और बबलू जायसवाल जुड़े हुए हैं उत्तर दानापुर से। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका, और फरमाइश है तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
2: हेलो मैम, ये इश्क बिना क्या जीना यारो सॉन्ग बजा देते हैं, अच्छा रहता है। न्यू यूजर हैं आपके रेडियो रिमझिम का।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
6: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है आप सभी का अपना, योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम बात कर रहे हैं सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत आज गर्भावस्था के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियों के बारे में। तो आगे यहाँ मेरे पास सवाल है, और सवाल ये है कि क्या गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाना जरूरी है? तो जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। समय समय पर होने वाली जांच से माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सकती है और किसी भी संभावित समस्या का समय रहते ही पता लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच करवाने, जरूरी टीके लगवाने और आयरन फोलिक एसिड की गोलियां लेने से स्वस्थ गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव में मदद मिलती है। तो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच केवल एक सलाह नहीं बल्कि माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सुनते रहिए रेडियो रंजिम 90.4 FM, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस। मिलते हैं आप सभी से अगले सवाल के साथ।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
11: आज ही आए ST ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
13: और अब ST ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 85070-32042 पे।

वेलकम बैक दोस्तों, 90.4 एफएम रेडियो रिमझिम पे आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और मैसेज काफ़ी सारे पहुँचे हुए हैं हमारे पास। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अर्ज किया है गौर फरमाइएगा। और लिखते हैं कि ऐठन तेरा कर्ज उतार रहा हूँ, एक ही दिन में तीन तीन बार नहा रहा हूँ। और मैसेज के साथ है दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कागज़ पे हमने जिंदगी लिख दी, अस्को से खींचकर खुशी लिख दी, दर्द जब हमने उबारा लफ्जों पे, लोगों ने कहा वाह क्या गज़ल लिख दी। और मैसेज के साथ है अनिल जी चोटपुर से। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग कब प्ले होगा। तो बिल्कुल आपका भी सॉन्ग जो है प्ले करेंगे, थोड़ा और वेट, नेक्स्ट सॉन्ग आपका होगा। और यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करने जा रहे हैं हमारे पास पहुँचा हुआ है, और गाने की फरमाइश है राहू में उनसे मुलाकात हो गई। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं अंकित जी गोपालगंज धर्मपरसा से। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और आपकी फरमाइश है, प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिखे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी थे, और वॉइस पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं ये।
1: मैम जी आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद हमारा गाना बजाने के लिए, यहाँ पे इस गाने सुनने के लिए बहुत ही देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही देर बाद हमारा सॉन्ग प्ले हुआ, और ये सॉन्ग मैं और मेरा भाई दोनों ही मिलके बहुत ही सुन रहे हैं। मैं अंकित और मेरा भाई प्रिंस दोनों ही का फेवरेट सॉन्ग है ये, और आपको इसको प्ले करने के लिए बहुत ही बहुत दिल से धन्यवाद।
0: नब्बे 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम आपका आवाज़ बहुत ही सुंदर है और सुन के सारी टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्या आज मेरा गाना बज सकता है? मेरा नाम विकास सिंह है और त्रिलोकपुर से जुड़े हुए हैं, तो विकास सिंह जी हम आपके गाने की फरमाइश ज़रूर पे कर सकते हैं, और आप अपने गाने की फरमाइश भेज सकते हैं जो भी गाना आपको सुनना है। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है, और यहाँ सोनू शर्मा जी जुड़ चुके हैं अहिरौली से, बहुत बहुत स्वागत आपका, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। और राजू सोनी जी हैं, जी हाँ बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश है, थोड़ा वेट करिए हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है, सोनी है गोपालगंज से, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, और गाना है क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, तो इंजॉय करते हैं सोनी जी की फरमाइश पे, इनके पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अरे हाँ, इरशाद मास्टर जी हैं, धना से लिख रहे हैं कि सोनी जी, मेरा पोता आजम अंसारी इस नंबर पे कॉल करना चाहता है, कहिए तो करेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, 72 77 16 65 96 पे बोल दीजिए करने के लिए, और गाने की फरमाइश है तो ज़रूर प्ले करने करेंगे। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को, काफ़ी खूबसूरत गाना सुन रहे हैं सोनी जी की फरमाइश पे रेडियो।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
9: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ सोनू शर्मा जी हैं गाने की फरमाइश के साथ, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से, सुनते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
1: कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया, बस दादा के पास बैठ के रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
0: अच्छा, और दादा जी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं?
1: दादा के पास बैठ कर रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
0: अच्छा, और आपका नाम क्या है?
1: आजम।
0: आजम, और घर कहाँ है आपका आजम?
1: धनाव।
0: धनाव, और आप करते क्या हैं?
1: पढ़ाई।
0: पढ़ाई करते हैं कि दादाजी के साथ बैठ के सिर्फ रेडियो सुनते हैं?

0: बस।
1: और सभी लोग रेडियो सुनते हैं?
0: हाँ।
1: तो फिर अपने दोस्तों के साथ और दादाजी के साथ अपना गाना एंजॉय करिए।
0: ठीक है
1: ठीक है, गाना प्ले कर दिए है।
0: ठीक है
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे धनाव से, गाने की फरमाइश पहुंची थी आजम अंसारी जी की और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी चल मुसाफिर चल। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग चल।

मुसाफिर चल राजू सोनी है हरपुर से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है हरपुर से राजू सोनी जी का, और इनको सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में काफ़ी खूबसूरत गाना हमरो उम्र तोहरे के लाग जाए। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए रेडियो 90.4 FM पे।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, जहाँ की हम बात कर रहे हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत गर्भावस्था के बारे में और उससे जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। तो यहाँ हमारे पास अगला सवाल पहुँच चुका है और अगला सवाल है गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगवाना जरूरी होता है। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु को कुछ गंभीर संक्रमणों से बचने के लिए कुछ टीके लगवाना बहुत ही जरूरी है। भारत में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर की सलाह के अनुसार टिटनेस और डिप्थीरिया से सुरक्षा देने वाला TD टीका लगाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में अन्य टीकों का भी सलाह दी जाती है, इसलिए गर्भावस्था की नियमित जांच के दौरान स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से टीकाकरण के बारे में जानकारी जरूर ले और उनके बताए अनुसार समय पर टीके लगवाए। याद रखिए समय पर लगाया गया टीका माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का 1:55 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ फरमाइशों का सिलसिला जो है काफ़ी सारे हैं बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि थैंक यू मेरा गाना बजाने के लिए और राजू सोनी है हरपुर से। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी, प्रेम अदेशिया पुराना कुशनगर उत्तर प्रदेश से। सोनी जी नमस्कार, कैसी हैं? और गर्म गर्म शुद्ध प्रिया सोनी जी। जी हाँ, गर्म गर्म शुद्ध प्रिया तो हो ही गया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, आज हमारे तरफ हमके तरफ से गाना सुनाने के लिए। और धनाव से हैं प्रसाद मास्टर जी। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है खेसारी लाल की आवाज़ में, डोली में गोली मार दे। और गाने की फरमाइश के साथ है, नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए कि आप कौन है, कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है लिख रहे हैं कि छठ पूजा का गाना सुनना है, उग है सूरज देव। और सोनू शर्मा है अरोली से जुड़े हुए हैं। तो सोनू जी अभी तो छठ का कोई त्यौहार आया नहीं है, फिर भी चलिए आपकी गाने की फरमाइश है प्ले कर रहे हैं। एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, छठ पूजा के काफ़ी खूबसूरत गाना, बहुत ही सुंदर गाना। और गाने की फरमाइश करने वाले थे, नाम है इनका सोनू शर्मा जी, जो कि जुड़े हुए हैं हिरौली से और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, छठ पूजा हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं, हमारा इमोशन है। जी हाँ बिल्कुल, और छठ पूजा जो यूपी बिहार वालों के लिए त्यौहार नहीं, उनका इमोशन से होता है। और गाने की फरमाइश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश के साथ जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर डुपर सॉन्ग छठी मैया, नमस्कार सोनी जी और छठी मैया के। और दिलीप कुमार ठाकुर हैं मिर्जापुर टुमाली पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका, हाजिरी बिल्कुल लग चुकी है आपकी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम छठ पूजा का सॉन्ग और छठी मैया का गाना सुनकर। और मैसेज करने वाले हैं उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से, और हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जय छठी मैया और आपके चरणों में प्रणाम। और राजू सोनी है हरपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हर हर महादेव, सोनी जी हमें भी शामिल कर लीजिए। बिल्कुल आप भी शामिल हो चुके हैं। और पुलिस लाइन के सामने से शंभू यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, और विकास सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, त्रिलोकपुर से जुड़े हुए हैं। और आगे यहाँ मैसेज है, मनीर आलम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि साथ में विनोद मथनिया से जुड़े हुए हैं, मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम से सया निकल गए नैना लड़ी थी, गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे और आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोहब्बत करना आसान नहीं है साहब, कई भूतों से लड़ना पड़ता है एक डायन के लिए। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर जी मिर्जापुर टुमाली पंजाब से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी जी नमस्कार, राम कुमार बोल रहा हूँ दरभंगा जिला से और मुझे भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिए। तो राम कुमार जी हम आपको बता दें कि आपके गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे और अगली फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद ही प्ले होगी, यानी बुधवार को होगी। सो में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे हाँ और भी सारे मैसेज है शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, उमरिया के रोग हाँ उमरिये पे होला, और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं अनुज कुमार जी हैं। और चलिए आपकी गाने की फरमाइश है तो प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: 90.4 FM रेडियो रिमझिम में फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। अगला सवाल, यानी हम बात कर रहे थे गर्भावस्था के बारे में, सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत और गर्भावस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास अगला सवाल पहुंच चुका है और अगला सवाल है, क्या गर्भावस्था के दौरान हल्का फुल्का व्यायाम या एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है? तो जी हाँ, सामान्य और स्वस्थ गर्भावस्था में डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे टहलना या सरल व्यायाम फायदेमंद हो सकते हैं। इससे शरीर सक्रिय रहता है, तनाव कम करने में मदद मिलती है और प्रसव के लिए शरीर को तैयार होने में भी सहायता मिलती है। हालांकि हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी प्रकार का व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर आराम करने की सलाह दे तो उसी की पालन करना सबसे उचित होता है। तो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी और अपने शिशु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर की सलाह का पालन करना सबसे जरूरी है। फिर मिलते हैं, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। मिलते हैं आप सभी से अगले सवाल के साथ आपके कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में।
9: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
11: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015 पे।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रणसिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बेचारी लड़कियाँ किसी के घर मेहमानी में जाए तो बस एक दिन ही इज्जत होती है, दूसरे दिन वो लोग बर्तन मजवा ही लेते हैं। और मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ रामू कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि हेलो दिव्या मैम, कैसी हैं? और आप यह सॉन्ग सुनकर गाँव का छठ पूजा का याद आ गया। मैम आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा है और गा रही हैं आप। और रामू जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सो में बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमसिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन 2:15 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी समय हो चुका है दोपहर समाचार का। तो आप सब कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमसिम को। फिर आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद। और जिनकी भी फरमाइश से बच गई है आप सभी फिर से मैसेज करिए, जुड़िए और दोपहर समाचार के बाद आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व

कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया

0: आप हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करें 87-894-18744।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
14: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
14: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
14: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाए।

0: बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेकर के 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527881 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे जाइए और डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं हमें 72776 पे और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश को। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मौसम विभाग का आधी तूफान को लेकर अलर्ट, कृपया कपड़ों पर नाम और मोबाइल नंबर डालकर सुखाए ताकि हवा में उड़ जाए तो कोई आपसे संपर्क करके वापस लौटा सके। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो में जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि चिंटू दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज है, पिंटू कौन कौन से? चिंटू एक ईमेल और दूसरा फीमेल, एक मिनट में इधर की बात उधर पहुँचा देती है। और लिखते हैं चिंटू कि ये बात उसकी पत्नी सुन रही थी, फिर क्या 4 दिन तक चिंटू एक ही पैर से चलता रहा। ये अच्छा था। और अनिल जी है चोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गाना सुना दीजिए। नई मंसारी जामतारा से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाना सुनना है किकरा से कहीं दिल के बतिया, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज है। और डॉक्टर अमोद कुशवाहा जुड़ चुके हैं जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से।

और तू मेरी जिंदगी है गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मस्तानी मूवी का गाना सुनना है। किशोर कुमार, किशोर जी जुड़े हुए हैं झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम मेरा शायरी है, सुना दीजिए। बिल्कुल आपकी शायरी है, चलिए सुनाते हैं।

और यहाँ शायरी है, लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है, हर दिन थोड़ा और हसीन लगने लगता है। यूँ हो मुस्कुराते रहिए और महफिल सजाते रहिए, रेडियो की दुनिया में आपका अंदाज सबसे प्यारा नज़र आता है। और मैसेज के साथ है, नाम है इनका ये, साथ में नाम भी मेंशन किया करिए आप लोग, और नाम ही इनका गोपालगंज धर्म प्रशा से अंकित जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ सबीना खातून जुड़ चुकी है फ्रॉम दुलदुलिया से, बहुत बहुत स्वागत सबीना जी आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिखे हैं एक बार गोपालगंज का, मैसेज है लिख रहे हैं कि एक बार गोपालगंज का एक लड़का रेडियो रिमझिम के ऑफिस में फ़ोन करता है। लड़का, हेलो रेडियो रिमझिम से आरजे अफसर बोल रहे हैं? और आरजे, हाँ भाई बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? लड़का, गाना वाना छोड़िए सर जी, बंजारी मोड़ पर मेरी भैंस खो गई है, ज़रा रेडियो पर बोल दीजिए कि वहाँ जहाँ कहीं भी हो सीधे घर लौट आए। और मैसेज करने वाले हैं अनीश यादव जी, तो अनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ राकेश भारती जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं मेरा भी हाजिर लगा दिए, बिल्कुल हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम से, गाने की फरमाइश है। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं मनीर आलम जी, जो कि विनोद मठनिया से जुड़े हुए हैं, और उनको सुनना है गाना सत्यम सुंदरम से, सत्यम शिवम सुंदरम से। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश है जो प्ले कर दिए हैं, सया निकल गए नैना लड़ी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे मनीर आलम जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही लेट हो गया है, श्रुति दी 12 बजे के बैठे हुए हैं और मैसेज करने वाले हैं। श्याम सुंदर जी हैं संग्रामपुर से, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: दिल मेरे तू दीवाना है, सूर्यवंशी मोदी का सॉन्ग।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे श्याम सुंदर जी संग्रामपुर से, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है। और यहाँ चलिए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं ये।
1: एक शायरी बोलना था दीदी, कि कदम कदम पे बहारों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। कि कदम कदम पे बहारों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। सितारे बोले हम देंगे साथ, मगर अफसोस सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ा। बताइएगा सुरुचि दीदी कैसा लगा?
0: काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो में जुड़े और आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगला मैसेज है, और वीर बहादुर जी जुड़ चुके हैं गोपालगंज धर्मपरसा से। बहुत बहुत स्वागत वीर बहादुर जी आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि चांद की रोशनी से भी प्यारी लगती है आपकी बातें, दिल को छू जाती है आपकी हर मुलाकातें। आज एक गाना आपके नाम करना चाहते हैं, बस यूं ही बनी रहे आपकी मीठी सी मुस्कान। और मैसेज के साथ हैं वीर बहादुर जी गोपालगंज धर्मपरसा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, आज अमन जी जुड़े हुए हैं रेडियो हॉटस्टार बढ़िया सिवान से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम शो में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है कॉल के माध्यम से, तो बात करेंगे, सुनेंगे कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो टिमसन में। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से। कैसे हैं विमलेश जी?
2: अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाना कौन सा सुनवा दूँ आज आपको?
2: आप हम जो गाना सुनेंगे वो गाना के साथ आपको भी गाना पड़ेगा।
0: कोशिश करेंगे।
2: हम थोड़ा एक तोला मिला देते हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना मजा ऐसा नशा है। प्यार करके देखो ना, यही सब सुनना है
0: जी। और सुनाना भी है,
2: सुनाना है जितने लोग सोचा है रंजन सुनने वाले हैं सबको साथ, और आपको गाना के साथ गुनगुनाना जरूर है।
0: कोशिश करेंगे।
2: आज के लिए यही गाना बजा रहा हूँ कि आप ये गाना के साथ थोड़ा गुनगुना सके।
0: तो गाना प्ले करें
2: जी?
0: गाना प्ले करें।
2: ओके
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल किया।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: तो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में अगले सवाल के साथ। यानी हम बात कर रहे थे गर्भावस्था और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, और हमारे पास यहाँ सवाल पहुँचा हुआ है, गर्भावस्था के दौरान परिवार के सदस्य किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान परिवार का सहयोग माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्य ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि गर्भवती महिला को समय पर पौष्टिक भोजन मिले, पर्याप्त आराम करने का अवसर मिले और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाया जाए। इसके साथ ही घर के कामों में मदद करना, उन्हें तनाव मुक्त और खुश रखने की कोशिश करना तथा उनकी बातों और जरूरतों को समझना भी बहुत जरूरी है। एक सहयोगी और सकारात्मक माहौल स्वस्थ गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, गर्भावस्था केवल एक महिला की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। परिवार का प्यार, सहयोग और देखभाल माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य की मजबूत नींव बनते हैं। तो सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले सवाल और जानकारियों के साथ।
8: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 3:09 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो घड़ी में और 50 मिनट है हम सभी के पास आप सभी की फरमाइशों के लिए। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज है लिख रहे हैं कि ऐसे ही गुनगुनाइए और गर्मी बढ़ाइए, इसके बाद बारिश करवाइए, बहुत ही बढ़िया। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, नाइस सॉन्ग। रोहित जी हैं देहरादून से और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि ये शाम मस्तानी गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर जी हैं देवघर झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका और गाने की फरमाइश है। थोड़ा इंतज़ार करिए हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी चौन से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे लिखते हैं कि टूटा हुआ आईना किसी ने जोड़ा है क्या, टूटा हुआ आईना किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने किसी को छोड़ा है क्या, तुम क्या हंस रहे हो मेरी शायरी पर, तुम्हारी भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। और मैसेज के साथ हैं पाजी यूपी चौहान से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है आज अमन जी का और इनको सुनना है गाना, तो चलिए वॉइस प्ले करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।

और यहाँ तो इन्होंने गाना का ही पूरा रिकॉर्डिंग भेज दिए हैं। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे आरजे अमन जी की फरमाइश थी बढ़िया सिवान से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं कि थैंक्स फॉर प्लेइंग माई रिक्वेस्ट। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहाँ से। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: कैसे
0: जी? बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: सब ठीक है आपका, बताइए मैडम अब क्या हो रहा है, खाना पीना हो गया?
0: जी हाँ, खाना पीना तो हो गया है, आपका हुआ? जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है जी।
1: क्या बोले मैडम?
0: बोले नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: अच्छा, मेरा नाम हो गया अलाउद्दीन
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं अलाउद्दीन?
1: माझा से बोल रहे
0: हैं। अच्छा माझा
1: जी,
0: माझा तो बहुत बड़ी है, माझा में कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी?
0: जी
1: मैडम, माझा सब ठीक है मेरे।
0: अच्छा अच्छा, तो आज गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: ये सुना दीजिए, तो जब जब मुझको पुकारे मैं कोरिया उन्नति किनारे
0: जी। और डेडिकेट भी रहेगा
1: सब जितने भी सुनने वाले हैं, सुनाता हूँ रेडियो में बोला और अपने बोले।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी
1: जी मैडम। ठीक है
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: 90.4 FM रेडियो रिमझिम पे फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हम बात कर रहे थे आज गर्भावस्था के बारे में, और गर्भावस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सभी के बीच हाजिर है। और हमारे पास अगला सवाल है, क्या गर्भावस्था के दौरान तनाव और चिंता का असर माँ और शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ बहुत ही ज्यादा तनाव में रहती है या हर समय चिंता करती रहती है तो इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और शिशु के विकास पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए इस समय जितना हो सके खुश रहना, अच्छी बातें करना, मनपसंद काम करना और परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। घर के लोगों की भी जिम्मेदारियां है कि गर्भवती महिला को प्यार और सहयोग दे, उसकी बातों को समझे और उन्हें बेवजह की चिंता से दूर रखे। अगर किसी बात को लेकर ज्यादा परेशानी या घबराहट महसूस हो रही हो तो डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, खुशहाल मन और परिवार का साथ स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु के लिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले सवाल और कुछ जानकारियों के साथ।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में 3:27 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो मैसेज का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी मैसेज जो है हमारे पास पहुँच ही रहे हैं। और यहाँ मैसेज है कि मैडम जी एक और गाना सुना सकती हैं। तो बिल्कुल नहीं, एक दिन में एक ही गाने की फरमाइश प्ले करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे फरमाइश है, तो एक दिन में दूसरा गाना नहीं प्ले कर सकते। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी बहुत ही गर्मी है दुबई में। जी हाँ, दुबई में ही नहीं, हमारे यहाँ भी काफ़ी गर्मी है। और संजय यादव हैं दुबई से। आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग सोनी मैम, टुनटुन यादव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाना सुनना चाहते हैं पट्टी ओ पट्टी। और बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत एक बार शो में। और बनी रही हमारे साथ में। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमारा भी गाना बजा दीजिए। तो बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी एक वकील का बेटा रोता हुआ उसके पिताजी के पास गया और बोला, पापा आज मम्मी ने मुझे मारा। वकील ने उसे एक थप्पड़ और मारा और कहा, वकील का बेटा होकर इतना भी नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपील भी हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। और मैसेज करने वाले हैं दनिश मिश्रा जी दिल्ली से, और आपकी मैसेज शामिल कर दी हैं, आपकी शिकायत ख़त्म हुई। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, अंकित जी जुड़े हुए हैं धर्मपरसा से, अहिरौली धर्मपरसा से। और लिखे हैं कि सोनी मैम आपका आवाज़ में एक प्यार सा जादू है जिनको सुनकर दिल हो जाता है बेकाबू। सोनी मैम आपकी आवाज़ में एक प्यारा सा जादू जिनको सुनकर दिल हो जाता है बेकाबू। और वीर बहादुर की तरफ से बस इतना सा पैगाम है, आपकी मुस्कान बनी रहे यही दिल की अरमान है। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीर बहादुर जी। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है लालगंज वैशाली से, MD नौशाद जी, MD सदाब जी, MD रिजवान और अभिनंदन टेलर के सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी के साथ गाने की फरमाइश है। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, और हैंडसम हीरो गाना सुनना है। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश प्ले कर दी, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और कार्यक्रम है आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाने की फरमाइश हम सभी सुन रहे थे, लालगंज वैशाली से गाने की फरमाइश पहुंची थी अभिनंदन टेलर की तरफ से। साथ में थे एमडी नौसाद जी, रिजवान जी, सदाम जी और सभी साथी थे। तो और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुँच गया, लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना सुनाने की खातिर। और एमडी महमूद जी केरला से भी हैं, चलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एमडी महमूद जी। और आगे यहाँ मैसेज है, संजय यादव हैं दुबई से, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपकी वॉइस इतनी अच्छी है तो आप कितनी अच्छी होंगी। और मैसेज करने वाले हैं अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैं भी जुड़ गया हूँ शो से और प्रोग्राम कुछ नहीं चल रहा था, प्रोग्राम डेली चल रहा है, आप शायद नहीं सुन पा रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं एमडी महमूद जी केरला से, बहुत बहुत स्वागत आपका और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहाँ मैसेज है, आरजे अमन जी हैं, लिख रहे हैं कि ये गाना भी बहुत अच्छा है और अच्छा लगा सुन के, मज़ा आ गई भोजपुरी वाला और इसमें से आपकी सिंगिंग कमाल की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वाह सोनी जी का बात बाजी बड़ा नीक गावत बानी और तोहरा जैसन हैंडसम हीरो। मैसेज करने वाले हैं प्रेम कुमार, प्रेम मदेशिया जी पोड़ाना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जल्दी सुना दीजिए, तो बिल्कुल जल्दी आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं। और नई मंसारी जुड़े हुए जाम तारा से, उनको सुनना है गाना केकरा से करी दिल के बतिया हो दुखवा से सवतिया हो गए। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। कल्पना पोडवारी जी की आवाज़।

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया

दोस्तों ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। तीन बज के 45 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 15 मिनट समय है। और यहाँ गाने की फरमाइश जो है काफ़ी सारे हमारे पास है और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ कुछ मैसेज है और लिख रहे हैं कि जी थैंक यू मैम मेरा गाना सुनाने के लिए। और जब भी आप लोग मैसेज करते हैं पुराने मैसेज डिलीट कर देते हैं और फिर जब दोबारा मैसेज करते हैं तो नाम भी मेंशन नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करिए लोग, मैसेज डिलीट और बिल्कुल नहीं। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैम सभी को बोल दीजिएगा मेरी तरफ से नमस्कार, बिल्कुल बोल दिया। और बनारस से अनिल जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग सुखवा सवतिया हो गए। और आगे लिखते हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें और उसके कहे शब्द हमेशा यहीं रह जाते हैं। सो यहाँ बिल्कुल और आगे यहाँ एक और शायरी पहुँची हुई है हमारे पास और लिखते हैं कि तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तुम मेरे पास नहीं फिर भी तुम्हारी याद से मोहब्बत की है। कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उस लम्हे से मोहब्बत की है। तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है, मैंने तुम्हारे इंतज़ार से भी मोहब्बत की है। क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं आरजे अमन जी पढ़रिया सिवान से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आदमी खिलौना मूवी से गाना सुनना है, भूल भूल ने यही दिल को पुकारा होगा। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को। और टुनटुन यादव जी जुड़े हुए हैं गोपालगंज बिहार से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, फरमाइश करने वाले थे, नाम है इनका टुनटुन यादव जी और लिख रहे हैं थैंक यू मेरा गाना सुनाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नज़रों से दूर होकर भी दिल के पास लगती है आपकी बातें, हर दिन कुछ खास लगती है। सोनी मैम यूं ही मुस्कुराती रहिए हमेशा, क्योंकि आपकी मुस्कान सबसे प्यारी सौगात लगती है। और अंकित जी हैं साथ में, हैं प्रिंस जी और गोपालगंज धर्मप्रसाद से जुड़े हुए हैं अहरौली गाँव से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप दोनों का, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ मैसेज है, और लिख रहे हैं कि बेचैन मोहब्बत किया करते हैं आवाज़, बाय बाय सोनी जी। और मैसेज करने वाले इरशाद मास्टर जी धनाव से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज हेलो माई चॉइस शो में अच्छा वर्जन रहेगा और पुराना रहेगा, तो ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि आज का हेलो माई चॉइस शो मेरा नहीं चलने वाला है और भारती जी का चलने वाला है, और आपकी गाने की जो फरमाइश है वो बचा रहेगा और अगले नेक्स्ट डे में चलेगा जब मेरी फरमाइश चलेगी उसमें। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और यहाँ एक और मैसेज अभी अभी पहुँचा, अभी अभी दस्तक दिए हमारे बीच। और अनिल कुमार जी हैं दरभंगा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और फरमाइश के साथ है तो माफ़ करिएगा, आज आपकी फरमाइश जो है नहीं पूरा कर पाएंगे, कल समय से जुड़िए शो में और आपके गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है इंस्टाग्राम पे, और फरमाइश करने वाले हैं दिनेश रवानी जी और इनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, दिनेश रवानी जी की फरमाइश थी इंस्टाग्राम पे और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से लिख रहे हैं बाय बाय मैम, और उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से लिख रहे हैं गुड इवनिंग बाय बाय फिर मिलेंगे। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज इतना व्यस्त हो गए कि 7 दिन पूरा होने के बाद भी फरमाइश नहीं कर पाए, बट सो अच्छा लगा। बाय बाय सोनी जी। अनिल जी हैं छोटपुर से और यहाँ एक और मैसेज है, अंकित है और साथ में इनके हैं इनके दोस्त प्रिंस जी, और लिख रहे हैं कल हमारा सॉन्ग ज़रूर प्ले कीजिएगा। बिल्कुल कल आपकी गाने की फरमाइश ज़रूर प्ले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी शो में मेरा साथ दिया। और यहाँ मैसेज है फिर मिलते हैं कल। जी हाँ, कल फिर मिलेंगे आप सभी से इसी शो में, और जिनकी भी फरमाइशें छूट चुकी है उन सभी के लिए जाते जाते ये आखिरी गाना मेरे तरफ से। और कल फिर आप इसी शो में जुड़िएगा इसी समय पे, ये मतलब नहीं कि 12 बजे एंट्री करिएगा आप सभी शो में, और कोशिश करिएगा कि पहले फरमाइश भेजें और लास्ट में फरमाइश आता है तो छूट जाता है। तो चलिए आप सभी के लिए जाते जाते अगली फरमाइश छोड़ के जा रहे हैं, और इसी फरमाइश के साथ आप सभी दीजिए आज के इस सफ़र से जाने की इजाज़त, और यहीं लेते हैं आप सभी से खूबसूरत सा विराम और आप सभी से इजाज़त लेकर, लेकिन वादा है कि कल फिर मिलेंगे आप सभी से इसी जोश इसी मस्ती और ढेर सारी बातों के साथ आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क 99-393-65-930।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम।
11: सुनो दिल।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद के ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
10: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
6: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
6: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22567 या 97-714-86-164।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971660।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62-042-34-03, 62-042-34-03।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी।
0: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिंजन 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP।

0: त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971660।
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
3: Pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी, तो गाना सुना था।
1: जी, गाना तो सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
2: मेरा नाम अली है।
1: जी, और कहाँ से हैं आप?
2: मैं बिहार के रहने वाला हूँ, फिलहाल कश्मीर में से बात कर
1: रहा हूँ। अच्छा जी, तो बता दीजिए क्या फरमाइश है आज आपकी?
2: कव्वाली है भाई झोली।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: बस जो जो सुनने वाले सब किसी।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरथला से।
1: जी जी, क्या हाल है आपका?
0: जी सर, अभी सो गए थे मैडम। हाँ, देखे हैं कि टाइम हो गया है, निकल गया टाइम, अभी तक कॉल नहीं।
1: अच्छा जी,
0: तो नींद खुला है खैरियत है ना?
1: हाँ हाँ सब खैरियत।
0: आज पानी होगा कि नहीं मैडम?
1: जैसे गर्मी है वैसे तो होना चाहिए पानी।
0: हाँ तो बता रहा था मोबाइल पे कि आज पानी का उम्मीद है 15 तारीख।
1: मौसम गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो बारिश तो होना ही चाहिए।
0: बहुत बेहाल है एकदम, इतना बेहाल है गर्मी के हद से ज्यादा, वही जाना आना मुश्किल हो गया है।
1: जी
0: गर्मी में हूँ सुबह से, कहीं बाहर नहीं निकलना।
1: बढ़िया है, गर्मी में बाहर ना ही निकले तो अच्छा है, काम ना हो तो ना ही निकले।
0: नहीं काम तो है ही है, पर बहुत मतलब हमको निकलने से पूरा इतना पसीना हो जाता है कि मैं क्या बताए। सब मैडम सब हमको गाना सुना दीजिए, वो गाना कौन सा है? मोहब्बत में इतना करीब आ गए हम, ये अब जाना है मुश्किल सनम, सही गाना है तो वो गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: डेडिकेटेड क्या करना, पहले तो आप ही तो नाम सबसे डेडिकेटेड शुरू करना है।
1: हाँ।
0: क्या बताए
1: जी,
0: कोई भी कहता है तो हम भी काट पड़े तो सुनाया पहले।
1: जी जी,
0: हाँ बाकी तो जितना रेडियो प्रेमी लोग है रिंगिंग का वो तो है ही है, वो लोग जहाँ ट्यून करेंगे खोलेंगे या कान में सुने या रेडियो से सुने तो गाना तो आ ही जाएगा। उन लोगों को जो सुनने वालों को जो है हम धन्यवाद देते हैं, वो लोग सुनेंगे। हाँ सुनवा दीजिएगा मैडम यही जान।
1: ओके फिर चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
2: महा

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97 644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974 34 468 पे।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: Jab phone ding ding bajte hai to kehte hain hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: नमस्ते मैडम जी।
14: नमस्ते,
15: कैसे हैं मैडम जी? बहुत इंतजार कराते हैं
14: जी। क्या कीजिएगा, कॉल तो आते रहते हैं तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही।
15: बहुत 50 कॉल किए।
14: कोई नहीं, अभी तो लग गया ना।
15: हाँ, बहुत कोशिश तो लगेगा
14: जी। जी तो बताइए, कैसी हैं आप?
15: अच्छा है, आप अच्छा है ना?
14: हाँ, तो बता दीजिए आज की फरमाइश क्या है आपकी।
15: फरमाइश यही है, भिजी भिजी सड़कों पर तेरा इंतजार कर।
14: ओके, और ये सब किसी को सुनाना भी है
15: आपको? जितना दिए रिमझिम सब है, होता सब लोग सुनते हैं सबके साथ।
14: ओके चलिए बढ़िया है, तो गाना प्ले करो।
15: जी मैडम जी,
14: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी बहन जी, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
0: क्या हाल है आपका?
1: बस भोजन कर रहे हैं और आपका रंजन सुन रहा है।
0: सब तो बढ़िया है। तो और बताइए क्या हो रहा है आजकल?
1: बरसात हो रही है दीदी हमारे यहाँ तो, आपके उधर?
0: आपके यहाँ बरसात हो रही है?
1: जी जी जी,
0: हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है।
1: हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है, थोड़ी ठंडाई मिल गई है। गर्मी यहाँ भी थी लेकिन पानी गिर गया, ठंडाई हो गई है।
0: चलिए तो बढ़िया है, आपको ठंडा मौसम मिल गया, अच्छा है। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है।
1: सही बात है। और पकौड़ी बन रही है? पकौड़ी खा लीजिए, आज तो मौसम के हिसाब से पकौड़ी बनवाई है हमने। जी
0: बढ़िया है, फिर बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है जय विक्रांता।
0: जी और सॉन्ग
1: है कोटे ऊपर कोटरी में उसके रेल चला दूंगी।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जी सबसे पहले आपको है, और मांगीलाल धाकड़ है बड़ा गाँव से, मांगीलाल सनौतिया से, और गोपाल ओझा ककवासा से है, और गजराज सिंह लोधी है, और राम नरेश प्रजापति है पीतमपुर से। ये गाना सभी को डेडिकेट है। जी
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: नमस्कार मैडम।
14: नमस्कार।
15: गाना सुनने के लिए है
14: जी, बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
15: भोजपुरी में।
14: भोजपुरी में, गाने का नाम बता दीजिए।
15: पिया कोनो के नजरिया गहरी है, श्री भारती का।
14: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
15: पवन को सुनाना।
14: ओके, वैसे आपका नाम क्या है?
15: ज्योति कुमार बात कर रहे हैं
14: जी।
15: भागलपुर की ग्राम सुनना।
14: अच्छा, तो और सब बढ़िया है, कैसे हैं आप?
15: और सब ठीक है।
14: अच्छा जी, तो मौसम कैसा है उधर का?
15: अभी तो मौसम काफी गर्मी है इधर।
14: सेम वैसे इधर भी बहुत ही गर्मी है।
15: अभी तो बारिश नहीं हो रही है।
14: ओके, होगी, बारिश भी होगी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, हम गाना सुनना चाहते हैं।
0: गाना सुनाएंगे, नाम बता दे।
1: जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह पड़ेगा।
0: ओके, कहाँ से है आप?
1: आर मोड है, भोजपुर।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है।
0: अच्छा जी,
1: जी मैडम जी, मैं बोल रहा था ना कि टाइम में कॉल किया हूँ आपके रेडियो में, तो बहुत अच्छा लगा, मेरा कॉल लग गया, बहुत देर गाइड कर रहा था।
0: अच्छा जी,
1: ये गाना हमको कब तक सुनने को मिलेगा?
0: गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: दो टाइप सॉन्ग सुनेंगे।
0: तो गाने का नाम बता दीजिए मुझे।
1: आशिकी टू मूवी का हम तेरे बिन, उतना ही है गाना वो, और बुरा नहीं सकते
0: है। ओके, और सब बढ़िया। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासी खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555 94 94 53
2: और 9097160602।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडो पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतर

0: Now pick your phone up.
1: Hello?
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello?
0: Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
3: धन्यवाद। हम पूर्वी चंपारण बिहार का आर्य राज से बोल रहे हैं, चुना शाह जी।
4: जी, तो क्या हाल है आपका?
3: बढ़िया है, अपना कहिए। अभी फिलहाल हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं।
4: मौसम कैसा है उधर का?
3: इधर तो ठंडा है, काफी ठंडा है, 2-3 दिन से बारिश हो रहा है।
4: अभी तो फिलहाल इधर बहुत गर्मी पड़ रही है।
3: हाँ, उधर तो गर्मी है, इधर तो ठंडा है।
4: चलिए बढ़िया है, ठंडा है तो।
3: बारिश तो रोज हो रहा है यहाँ, शाम से शाम बारिश हो रहा है।
4: और सब बताइए क्या हो रहा है?
3: काम पर लगे हुए हैं हम लोग सब लोग। गाना सुनना है पीला गंगा पार फिल्म का, तोरे सपनवा में डूबल रहेंगे त्योहार दीजिए।
4: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
3: हाँ, सुनाना है। दिनेश शाह जी है, उमेश शाह जी है और धर्मेंद्र यादव जी है और प्रीतपुर बाजार से है मनीष चौधरी जी, उनको सुनाना चाहते हैं। और जितने सुनने वाले रेडियो दीजिए अपना।
4: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रमजिम 90.4 FM।
3: जी,
5: तोहरे सपन

0: गिरी।
1: हेलो
2: जी, बहुत स्वागत है आपके ड्यूटन जी के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैं डॉक्टर मोहन आगरा जिला कुशीनगर से बोल रहा हूँ।
2: जी

0: कैसे हैं आप?
1: अच्छा है मैं मतलब बताओ।
0: हम भी ठीक हैं।
1: मुझे गाना सुना दीजिए, तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: आपके लिए और सर जी परिवार के लिए, जितने भी रिमझिम किस्त होता है सभी के लिए।
0: जी जी, तो तबीयत कैसी है आपकी?
1: अच्छी है मैम, अपना बताएं।
0: जी बिल्कुल ठीक है। ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: जी थैंक यू।
0: सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0097-06-575।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट

0: अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
11: नमस्ते मैम।
12: नमस्ते,
11: हम रामा जी प्रसाद खाले राजन मार्केट से।
12: का हाल बा?
11: हाल ठीक बा, घाम बुझा तो या शाम की ओर बा।
12: धूप तो बहुत ही निकलल बा।
11: गाना सुना दिए।
12: बताएं कौन सा गाना सुना?
11: फिर मिल गया है मंदिर जाने के बहाने।
12: अरे गाना के उसे सुनाऊं के बाद?
11: जैसा वो सुंदर सब कुछ।
12: अच्छा चलिए, और ये सब ठीक बा?
11: ठीक बा।
12: ठीक बा, तब गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सब।
11: नमस्ते,
12: रेडियो रंजी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मुझे गाना सुनना है मैम।
0: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दें।
1: जावेद आलम।
0: कहाँ से हैं आप?
1: ग्राम धनखर से।
0: अच्छा जी, तो क्या हाल है आपका?
1: बहुत बहुत स्वागत है, आज मैंने आपके पास कॉल किया, आपने मुझे कॉल रिसीव किया, बात हुआ। बहुत पुराना लिसनर हूँ, काफी समय से मैं सुन नहीं रहा हूँ, इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैं इस समय मिला तो मैंने इस समय में जुड़ गया इस कार्यक्रम से। पर मैं ये गाना सबसे पहले मैं डेडिकेट करना चाहूंगा अफसर भैया को, सोनू भैया को, और हमारे रेडियो रिव्यू के जो डायरेक्टर सर हैं कृपा शंकर श्रीवास्तव सर, उनकी आज बदौलत है कि आज विदेश के कोई भी कोने में, देश के कोई भी कोने में रहते हैं तो हर कार्यक्रम सुन पाते हैं, बहुत बेहद खुशी होती है। हमारे दिल से दुआ यही रहती है कि रेडियो रिव्यू दिन पे दिन प्रगति करे, सफलता मिले, हमें बहुत खुशी होगी।
0: बिल्कुल।
1: और मैं गाना सभी के साथ में सुनना और डेडिकेट करना चाहूंगा, मैं अगर सामने तुमसे मिल

0: काफी समय के बाद मैं जुड़ा इस कार्यक्रम में, थोड़ा सा मुझे मन था तो गुनगुना लिया, यही गाना सुना दीजिएगा। जी मैम, जी मैम, नमस्कार मैडम।
1: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सब।
0: ओके ओके, सलाम वालेकुम।
1: मैं कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ?

0: किससे इलाज कराऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत एनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
4: हम रंजन,
5: क्या हो रहा है?
4: अभी खाना पीना हुआ है, अभी काम करने जा रहे हैं।
5: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
4: सुनवा दीजिए बरसात मूवी का।
5: कौन सा सॉन्ग?
4: तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तुझे लव मैं करता हूँ।
5: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
4: अपने वाइफ को, अपने सबको देना चाहते।
5: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: थैंक यू मैम, और आपको नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया। अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
1: बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: अभी काम पे हैं। और वो क्या हुआ कि सडनली मम्मी का तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया, तो उस दिन हम दिखाने चले गए डॉक्टर के पास, और उसी टाइम नंबर भी था आने वाला और उसी टाइम कॉलिंग का भी टाइम था, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाया। कोशिश था मेरा कि कॉल करेंगे लेकिन नहीं हो पाया।
1: तो अभी आपकी मम्मी कैसी हैं?
0: अभी ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिकवर हुआ है, ठीक है एकदम।
1: चलिए बढ़िया। तो और सब बताइए क्या हो रहा है? खाना हो गया आपका?
0: हाँ, खाना वाना खा के काम पे आए हैं।
1: जी,
0: और काम भी चल रहा है,
1: साथ
0: ही रेडियो भी सुनते रहते हैं उसी में बीच बीच में। अभी आएंगी वो सोनी जी जब 12 बजे, तो उसमें जुड़ते हैं।
1: जी,
0: तो पुराना नाता है ना रेडियो से, और रेडियो रिमझिम से भी।
1: अभी बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है।
0: आज एक फिल्म मूवी आई थी शाहिद कपूर की, उसी का एक गाना था, इश्क है तो इसका इजहार कर।
1: हाँ,
0: यही वाला सुना दीजिएगा।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सभी लिसनर्स को और थाने से रामा जी भैया को, उनके लिए एक शायरी बोलना है।
1: जी बोल दीजिए।
0: क्योंकि वो भोजपुरी में बात करते हैं, अच्छा लगता है। वो आते ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद से बोलते हैं नाम, उतना अच्छा लगता है बोलते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता है भोजपुरी में जब बोलते हैं।
0: और एक चीज उनके साथ और भी है कि बहुत सारे लिसनर्स उनको याद करते हैं, चाहे सोनी जी का शो हो उसमें भी और रेडियो में आपका मतलब कॉलिंग वाले में भी। हाँ, तो उनके लिए एक भोजपुरी में शायरी हम बोलेंगे कि सोना के साइकिल चांदी के पहिया, रामा जी भैया रउआ से भेंट हुई कहिया।
1: अच्छा जी,
0: उनको भी डेडिकेट रहेगा बाकी सारे लिसनर।
1: ओके, चलिए बढ़िया है
0: जी।
1: तो गाना प्ले करें
0: जी,
1: तो सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62 112 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड।

0: पर
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्ते,
7: बोला जी, बोलता
6: है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
7: जी, क्या हाल से हो आप?
6: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
7: बढ़िया।
6: तो क्या हो रहा है अभी?
7: अभी क्या होगा, धूप तो बहुत तेज निकला है, घर पे आराम कर रहा है।
6: धूप तो बहुत तेज है,
7: जाना मुश्किल है।
6: आराम कीजिए,
7: पंखा चल रहा है, आराम कर रहे हैं।
6: तो नाश्ता हो गया आपका?
7: हल्का नाश्ता खाना सब कुछ हो गया।
6: चलिए बढ़िया है फिर तो, आराम कीजिए और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
7: गाना सुनना है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगा है, दुल्हन का जो फिर दीवाना लगा।
6: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
7: जिनके पूरे टीम सुनी है, हम सुने, रोबा सुने, जितना आदमी जुड़ल हो ना सबको सुनी।
6: जी जी, तो गाना प्ले करें।
7: हाँ हाँ,
6: नमस्ते। नमस्ते, रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: दूल्हे का

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माइक चॉइस में। नमस्ते।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: बोल रहा हूँ, लाल से बोला है।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
1: अभी बैठे हैं, थोड़ा धूप में लग रहा है, काम हो रहा है, चल रहा है। बंधन फिल्म का गजनी।
0: और कौन सा सॉन्ग उसका?
1: बंधन बंधन यही लाइन है गाना गाने का।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? बता
1: दीजिए। रुको विकास शरीर रफीक मोहम्मद अली राजन की राजन प्रसाद है और आप है आपका टीम है।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
12: सलाम अलैकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम।
12: मैम, मुझे गाना सुनना है।
13: नाम बता दीजिए अपना।
12: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ मुंबई से।
13: जी, कैसे हैं आप?
12: हम सही हैं, आप कैसी हैं?
13: हम भी ठीक हैं।
12: जी, मुझे गाना सुनना है।
13: बताइए कौन सा सॉन्ग?
12: मुझे गाना सुनना है लैला को भूल जाएंगे।
13: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
12: जी, सबसे पहले आपको मासूम कौशल, जुनेद, समरन, हरमन भाई, गुड्डू भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई, साकिब भाई, रोबीना जी।
13: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
12: थैंक यू मैम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
5: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
11: अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम।
11: बोले, क्या समाचार?
10: ठीक बा, अपन बताएं।
11: हम लोग ठीक बा। गाना सुना दें।
10: जी, कौन सा गाना सुने?
11: तो हमारा गाना बजाते हैं।
10: कौन सा गाना?
11: ये थी कमर में साड़ी आला।
10: अच्छा, ये सॉन्ग क्यों सुना हूँ
11: सॉन्ग क्या सुना है बाबा? जो सुन यार बाबा सुना है बस।
10: अच्छा जी, और सब बढ़िया बानो?
11: सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा।
10: तब चले गाना प्ले करते।
11: ठीक है, ठीक है,
10: सुनाते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो मैम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4। वालेकुम अस्सलाम।
0: हम रोशनी बोल रहे हैं।
1: और कहाँ से हैं आप रोशनी जी?
0: पठानपट्टी से।
1: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: तेरी गली सूटेगा बनारस जब।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: हाँ
1: बता दीजिए।
0: आलिया का खुशी को, शाहिन को और ऐसा को और मेरे आपको।
1: सुनत रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अब 8029994111 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
11: श्रोता लोग नमस्कार, रुवा सभी सुनत बानी अपना बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमरा और दोस्त अफसर अली आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गई बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सराबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। चली आज के ई कार्यक्रम के हमनी के आगाज कर जाओ और इस सुनल जाओ ई बिरहा।
12: ध्यान दिहन, चार लाइन कवि जी भूमिका दिहलन। जिसके

0: पूरा विरहा आप लोगन ध्यान से सुनियन ता हमके पूर्ण विश्वास बाकी जरूर पसंद आई। विरहा का मूल चीज कहानी होला। हम कहिला कि नाच देखल जाला विरहा सुनल जाला, और अगर विरहा के कहानी से दिमाग हट जाई तो ओम प्रकाश यादव के विरहा सुनल व्यर्थ। ध्यान दियन एक लाइन गजल का लाइन मास्टर का, वाह वाह रे उपेंद्र भाई, यह गजल का लाइन है
1: वाह
0: कि कौन दिनवा
1: ओ हो

लेकिन कवि की कलम चली है, मैं धन्यवाद देता हूँ बारे कवि जी कि कई सन कल जुग, अरे कई सन कल

0: नजम के लाइन में कवि लिखलन है, का लिखलन? क्या बात है, कवि जी के लाइन देखा।
1: प्रेम के धागे से बना रिश्ता का डोर सही।

0: बाबू हमरे बिहार में एक छोट मोट जिला बेतिया जिला परेला, वही बेतिया जिला में रामपुर गांव का नाम हो। रामपुर गांव के ई कहानी हो मंगल माली जिनकर पत्नी के नाम अनीता रहे। हमार विरह एकदम शीशा जैसन झलके लगी, जैसे शीशा में साफ साफ सूरत लुकेला वही तरह साफ साफ सबके समझ में चली आई। मंगल माली के पत्नी का नाम अनीता, पति पत्नी के जोड़ी दूसर के हु देखे तो कहे कि आए है भगवान एकदम ऊपरे से लिख के भेजल हूँ, राम सीता जी सन लगत हलो। दूसर के हु देखे तो बड़ा तारीफ करे, भगवान भी सुन गईलन। समय कुछ दिन गुजरल और अनीता का गोद गुलजार हो गल, मतलब अनीता के गोद में एक ठे फूल खिलल, एक पुत्र रत्न के प्राप्ति भईल। मंगल माली के शरीर से अनीता के गोद भरल, और जब गोद भरल बाबू पुत्र भईल बा, लड़का बेटा भईल बा, गरीबी में गुजारा करत बा लोग, काम धाम मेहनत मजदूरी कही के बड़ा खुश बा दोनों प्राणी। जवन भी घर में बा नून सातू मेहनत मजदूरी आके कह के आवे घरे मंगल माली, आ घरे आके लड़का के गोद में उठा के खूब खेलावे। मेराजू से कहें अनीता से कि देखा हो भगवान हमनी पर कितना खुश बाण कि पहले बेर में हमार बेटा हो गल, भले हम गरीब बानी लेकिन बिटवा के पढ़ा लिखा के जनलू।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 7075763600 या 7075742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205262112 पे।
12: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
13: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी
14: ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सीवान में।
0: मेहरारू से बतियाऊं कि मेहनत मजदूरी करब आ बिटवा के खूब अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ाई, बड़ा सपना संजोत रहल। लेकिन बारे भगवान कहल जला कि भगवानों को कोनो चीज कबो कबो बर्दाश्त नहीं होला। भगवान आखिरकार एक दिन अनीता के मंगल माली से छीन लिया। अचानक बीमार पड़ ली और ज्यादा टाइम भी न लगल, बेटवा 10 बरिस कब चुकी हो चुकल बा। मंगल माली के वो लड़का 10 बरिस के हो चुकल बा, 10 बरिस साथ में पति पत्नी के गुजरल बा। अचानक तबीयत खराब भइल बा और लाख प्रयत्न कैलन मंगल माली, दवा दारू करौलन, हॉस्पिटल ले गइलन, लेकिन ना संभाल पावल। दुनिया छोड़ के अनीता जाए लगली, एक तरफ 10 बरिस के बेटा बा, एक तरफ पति। पति के हाथ पकड़ के रो के कहली कि देखी जी, हम तो दुनिया के छोड़ के जाता नहीं, अब हम बचब ना, हमके ज्यादा कोशिश मत कर बचावे के। लेकिन हमारी बेटा बा रहुआ इतने करब कि दूसर शादी मत कर, ना तो सुन ले बानी कि औरत के मर गिला पर मर्द शादी कर लेलन, और सौतेली मतारी जो घर में आवे लिया, सौतेला बेटा के बड़ा दुख दिली, बड़ा कष्ट दिली। मंगल माली अपने पत्नी के आंख से आंसू पोछे तो उनका तो समझावे तो उन की ऐसा काहे कहत अड़ू तू, तू हमके छोड़ के नहीं जा सकत, हमारा साथ जिये मरे के कसम खेले बड़ू 7 जन्म तक, आ तू ऐसे बात काहे बतियाओ तड़ू। लेकिन कोटि करा चतुराई, बिद के लिखा मीट न जाई, आखिरकार वही हुआ जो भगवान चाहते थे। पत्नी दुनिया के छोड़ के चल गई लेन, और मंगल माली प्रण कर लेलन के हम दूसर ब्याह न करब, यही बेटवा के देख के जिंदगी गुजार ले। मगर भैल का बाबू
15: कि भारी अमंगल भाईले, भारी अमंगल भाईले।

पत्नी के तिरही के दिने हित नात रिश्तेदार सब जुटल बा। मंगल माली के सब लोग समझावे लगलन कि देखा अभी जिंदगी बहुत लमहर बा, एगो बेटा भी बा, घर में केहू दूसर केहू बा ना, अपन शादी तू कैला, शादी कर ले तो कम से कम औरत रही घर में, लड़का के भी देखभाल करी, खाना दाना तोरो के बना के दिहल करी। सदी रचाई लेता लोग समझावत कि सदी रचाई लेता

0: सब लोग समझावत बा बुझावत बा कि ना ही मंगल तहार जवनी मन में विचार बा कि हम शादी ना करब तो यहां तू गलत निर्णय ले चुकल बड़ा। घर में 10 वर्ष के लड़का बा ओकर कितना लमहर जिंदगी बा तोहार अभी उम्र ये का होता
1: है। है।
0: अच्छा लड़की हमन के तलाशता नहीं जा और तू शादी कला भैया शादी कले तोहार उजड़ल दुनिया फिर से बाग गुलजार हो जाई। आखिरकार भैल का भैया एक लाइन तर्ज बा का तर्ज का लाइन बा ये तरज बा मास्टर की बड़ा याद।

ए भैया, आखिर हित नाता अड़ोसी पड़ोसी के कहला में पर के उनकर दिमाग बदल गई। मंगल माली के और अपन दूसर शादी कई लिया। नई नवेली घर में दुल्हन आइल बे, कुछ दिन तो ठीक है बीतल, कुछ दिन तो सही बीतल, लेकिन दो तीन बरस बीतला के बाद आखिर वह होके लागल जना बात का डर रहे। मैबा महतारी मैभे महतारी रहल, अब सौतेला बेटा के साथ अपन खेल देखावे शुरू कर दिया। का करे कि मारे गरी आवे

0: आखिरकार बाबू मैवा महतारी जो शुभम 10 वर्ष के लड़का रहे, अब धीरे धीरे 11-12 वर्ष का हो गल और मैवा महतारी उहे करे लगल जो मैवा महतारी 113 बेटा के साथ करे ले। शुभम से दिन भर काम करावे, भर पेट खाना भी ना दे और ना तो ऊपर से मारे गरी आवे लगल। ई बात ओना मंगल माली के बर्दाश्त ना भई, शुभम के पिता मंगल के बर्दाश्त ना भई। एक दिन आंख में आंसू लेके दोनों हाथ जोड़ के 12 वर्ष के लड़का से कलन की बेटा तहार दुख अब देखल ना जात बा, और इतार मैवा महतारी हमरा ऊपर इतना हावी हो गई बे कि हम कुछ बोल नहीं खी सकते।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
2: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में में 9693101611।
9: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602। भोरे ब्रांच में 8207856404।
3: सिवान ब्रांच में 9942071405। मेरवा ब्रांच में 8207856403।
0: ते काम करता बेटा कि तू घर छोड़ के कहीं चल जीता। ये दुख अब हमसे बर्दाश्त हारने के होते। बाबूजी कहलन, बाबू के बात सुन के एक बार शुभम 12 बरिस के लड़का के छाती फाटे लगल। लेकिन आखिर बाप रहलन, शुभम बेटा रहलन। आखिर सोच विचार करके वो शुभम 12 बजे रात को बाबू घर से निकल पड़ा। सोचा कि ननिहाल चल चले, मामा मामी तबा लोग उस शरण हमके दे दी लोग। गैलन हा, लेकिन तरज बात नहीं बड़ी के दमास्टर। वह तरज बा कि

0: के माध्यम से मऊ आनंद विहार टर्मिनल रेल सेवा तथा दोरीघाट औडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री मढ़ौरा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और वहां 91 निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और रेलवे की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आशीष रंजन के साथ समाचार कक्ष से मैं निधिश्री।
1: वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उनकी नियुक्ति की है। श्री संजय पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इससे पहले वे भारत सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने श्री संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री सिंह मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल नारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कार्यों की वास्तविक उपलब्धियों का प्रतिबिंब है। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के विकास कार्यों को और गति देंगे। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नो मैन्स लैंड, गायब सीमा पिलर के पुनर्गठन, सीमावर्ती क्षेत्रों से शीर्ष अतिक्रमणों को तत्काल हटाने तथा संदिग्ध वित्तीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि सीमा क्षेत्र में चिन्हित 1,359 अतिक्रमणों में से 1,349 को हटाया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्पों को पूरा करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री आज पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के पिपलावा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार के सहयोग पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने और लोगों की समस्याओं को पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की अपील की, ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके।
1: भाजपा के कार्यकर्ताओं से इतना आग्रह करूंगा, जो गरीबों को दिक्कत है उसको सहयोग पोर्टल पर जरूर ले जाने का, क्योंकि गरीब का यदि भला हो गया तो वो जीवन भर आपको याद रखेगा साथी। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही आग्रह करूंगा कि मोदी जी ने इस भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है और आप लोगों को भी इस काम को आगे बढ़ाना है।
0: श्री चौधरी ने सीतामढ़ी में निर्माणाधीन माँ सीता मंदिर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2029 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरव तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में मानसून अब भी कमजोर बना हुआ है। हालांकि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया में सबसे अधिक 69.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं विभाग ने पटना सहित 15 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर 42.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में कर्तव्यहीनता और लापरवाही बरतने के आरोप में शाहपुर प्रक्षेत्र के DIG डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भोजपुर SP राज की अनुशंसा पर शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार सहित 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सिवान और गया जी में यह सेवा केंद्र खोले गए हैं। रोहतास जिले के धनगाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से प्राकृतिक खेती पर जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को जीवामृत, बीजामृत और फसल विविधीकरण जैसी तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 250 किसानों और जीविका समूह की महिलाओं ने भाग लिया तथा प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लिया। वहीं सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के डुमरी बुजुर्ग में प्राकृतिक खेती विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इसके लाभों से अवगत कराया गया। मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। आरोपितों के पास से ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। मामला को लेकर जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 102 ग्राम स्मैक और एक बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे बसमतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 119 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रोहतास के करगर थाना क्षेत्र के बाउर गांव में तालाब में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिवसीय बिहार दौरे पर, कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बने राज्य के नए महाधिवक्ता, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

लेकिन बहुत पहले बुल्लू उस्ताद गा चुकलन कि बनला के सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। बाबू बनला पर के सब होला, बिगड़ला पर के होना। आज 12 वर्ष के लड़का शुभम जब अपने ननिहाल गई बा तो भयल का बाबू

रात के निकला घर से और भोर होते होते बाबू पहुंच गया अपने ननिहाल में मामा गांव। अब मामा गांव में ये लेके उम्मीद बेलन की मामा मामी तो हूँ लोग ऊजा शरण मिल जाए, लेकिन नतीजा का निकला

0: और बड़की दा तरज बा का तरज कलाइन बा देखा टेंगरी भाई ये धुन के आज लोग नया कह के गावता। आज से 25 वर्ष पहले हम और फिल्मी स्टार अनुराधा पौडवाल जी ये गीत के गा चुकल बन जा।
1: वाह वाह
0: का गोले रही जा
2: कि चिट्ठी जनिहा की जाइल बतार बाल माप।
0: अनुराधा जी कहते रे
2: कि चिट्ठी जनिहा की जाइल बतार बाल माप दिन कटत नहीं खे

उसी ट्रेन में आज वो 12 वर्ष का लड़का ट्रेन पर चढ़ा है और उस ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। गाना गा गा करके लोगों से भीख मांगता था। लोग उसकी मासूमियत चेहरा को देख करके, उसकी गीत को सुन करके, उसकी करुणाई गीत को सुन करके लोगों को दया आ जाती थी और लोग भीख देते थे। लेकिन बाहर कवि जी एगो लाइन बड़ा ऊंचा लिख दिया कवि जी अनुज लाल, मैं धन्यवाद देता हूँ ए लाइन पर।

0: आखिरकार बाबू वो लड़का ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। इसी तरह से जिंदगी की गाड़ी उस शुभम की चलने लगी।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947044468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: अपना फुटपाथ पर जिंदगी बिताने लगा, जहें सांस तहें बिहार, कभी ट्रेन में सूत जाए, कभी नींद आवे तो प्लेटफार्म पर सूत जाए, भीख मांग के जिंदगी के प्रवस्ती करे लगलन। लेकिन तरजबा आखिर भयल का बाबू।

0: तरह से सुंदर उपेंद्र जी हमरे बिरहा का भाव बा,
1: वाह वाह,
0: तरह से सुंदर बिरहा का फर्ज बा। का एक दिन उसी ट्रेन में भीख मांग रहा था, तब तक उस बच्चा 12 वर्ष के शुभम के साथ एक घटना घटी है बाबू। कौन सी घटना घटी?

आखिरकार बाबूजी उसी ट्रेन में एक धन जी नाम के सेठ से मुलाकात हुई है। आज जब धन जी नाम के सेठ से मुलाकात भइल बा, लड़का के मासूम चेहरा देखलन आ ओकर करुणाई गाना के अंदर जब देखलन, अपन उ दर्द गावत रहल, अपन दिल के दर्द बतावत रहल ट्रेन के यात्रियन से गा गा के गाना के रूप में। जब सेठ जी सुनलन तो इनके दिल में दया आ गल, सेठ जी के एकहू संतान ना रहल। लड़का के कलाई पकड़ के बैठौलन, कलन की बेटा तुम कहाँ का रहने वाले हो, क्यों भीख मांगते हो, सारी बात पूछे सेठ। आ जब सारी बात पूछलन, लड़का शुरू से लेके अंत तक अपन कहानी बतौलन। जब लड़का के दर्द के उस सेठ जी जलन, बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है, क्या तेरी भी किताबों में गरीबों के लिए असहायों के लिए यही लिखी जाती है। सेठ जी और लड़का के अपने घरे लेके चली गई। आया अपन, जबकि भगवान उनके अपन संतान के ना दे ले रहे, उनको संतान अपन ना रहे, वो लड़का के सेठ जी अपन संतान मान दिया लगे। अपन संतान मान के अपने घरे पोसे पाले लगलन, पढ़ावे लिखावे लगलन, रख लिया लगन। लेकिन भैल का बाबूजी तर्ज बा, का तर्ज कलाइन बा,

तनी बात समझ लग, गाना एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। अब वो लड़का के सेठ जी पोसे पाले लगलन, पढ़ावे लिखावे लगलन, 10 बरस और गुजर गए। अब लड़का शुभम 22 बरिस के हो गई बा। यहाँ का तनी कहानी इहवे छोड़ दा। सेठ जी के घर में वो लड़का चैन के जिंदगी जियता। सेठ जी का जितना कारोबार बा, सेठ जी बहुत धनवान आदमी रहलन, सेठ जी के जितना कारोबार फैलल है सब कारोबार वो संभार ले रस लड़का, सेठ जी के लड़का बन के। यहाँ कतनी कहानी हमें छोड़ा। ये हर घर के स्थिति एकर देखा। एकर बाबू अभी लड़का तो घर से निकल गए शुभम, लेकिन बाबू लड़का के चिंता करे लगल कि हम अपने पहली औरत से कहले रही कि हम ब्याह न कर, लेकिन ऐसा ना गए कि एकरा चलते हमारे बेटा घर से निकल गए। नतीजा ये निकलल बाबू कि वो औरत अब धीरे धीरे ओ माली के भी, मंगल माली के भी या प्रताड़ना देवे लगल, उनका साथ भी बदसलूकी करे लगल। ये चीज के वो बर्दाश्त ना कैलन, ये चीज के मंगल माली बर्दाश्त ना कैलन। धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरे लगल और गिरत गिरत एक दिन वो दशा आ गई कि मंगल माली खटिया पर पड़ गए। समय कुछ दिन और 2-4 महीना गुजरल। अब वो दिन आ गए कि उनकर मौत दरवाजा पर आके दस्तखत देवे लगल। उनकी मौत दरवाजे पर दस्तखत देने लगी। अब मंगल माली कुछ ही दिनों के लिए धरती का मेहमान बन चुका है। गांव घर हाय हाय कर रहा है कि मंगल की शादी करा के हमने के बहुत बड़ी यार गलती के लिए। देखें यही कहानी मोड़ लेती है। लेकिन जवन शुभम लड़का सेठ जी के रहा था, मंगल माली के लड़का, ओकर बचपन के एक दोस्त गांव में रहत रहे। आ जब ही गईल बा घर छोड़ ले बा, अपन मोबाइल के जवन ओकरा पास मोबाइल बा, मोबाइल अपना बाबू के दे देल बा, लेकिन वो सीम अपन निकाल के लेके चल गेल बा। बचपन के दोस्त ओकर गांव के जवन रहे सोचलस कि यार एकर बाबू मर जी हम शुभम के लगत तहे बा। आ शुभम एक ठे नंबर हमके अपन देले रहे, जो नंबर से यहाँ रहे तो बात होत रहे, तनी देखी लगाई हो सकत बा अगर लाग जाए तो शुभम के ही बात के हम जानकारी दे देव कि दोस्त तुर बाबू मरे अटकल बण। फोन लगवले बा, अचानक भइल का बाबू कवि जी गाना का भाव दियलन हा कि एक दिन मोबाइल पे

0: फोन लगौले बा गांव वाला दोस्त
1: बा।
0: अचानक शुभम फोन उठाया है, रोने लगा। गांव का जो बचपन का दोस्त था, कहा कि यार शुभम तुम कहां छोड़कर चले गए, और गए भी तो कुछ बताया नहीं, गया भी तो कुछ नहीं बताया, कुछ खबर तक नहीं, कहां रहते हो, कैसे हो। एक तरफ गांव का दोस्त रो रहा है, एक तरफ शुभम रो रहा है। गांव का दोस्त कहा कि सुनो, अब रोने से काम नहीं चलेगा।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
3: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99-393-65-930।
0: जो हुआ सो ठीक है, हो गया, लेकिन दोस्त हो इस नाते मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, हो सकता है इस दुनिया से चले जाए, ऐसी स्थिति आ गई है। कम से कम तुम बेटा हो, वो तुम्हारे बाप हैं, आकर एक बार पिताजी से मुलाकात तो कर लो भाई। जिम ही सुना है शुभम कि पिताजी की ऐसी स्थिति हो गई है। शुभम करता है क्या बाबू?

जब ही खबर को सुना है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, सेठ जी से पूरी बात को बताया। सेठ जी बोले कि बेटा शुभम देर मत करो, मौका बार बार नहीं आता है बेटा, ते तुझे जन्म दिए हैं, तेरे बाप हैं, जितना पैसा रुपया लेना है ले लो, घर का मालिक हो तुम, और जाओ अंतिम वक्त में अपने पिताजी से मुलाकात कर लो बेटा। सेठ जी की बात सुनकर के तुरंत अपना तैयारी कर दिया बेतिया के लिए, पैसा कौड़ी लिया, गाड़ी पकड़ लिया, रोते हुए गाड़ी पकड़ा है, सेठ जी का चरण स्पर्श किया है, चरण को छुआ है, और चरण स्पर्श करके रोते हुए पिता के याद में गाड़ी पकड़ लेता है लड़का शुभम। आ करके शुभम भोरहरी के टाइम में बेतिया उतरता है, उतर करके अपने गांव की ओर चला है बाबू, रामपुर गांव का नाम है, गांव की ओर चला है। लेकिन रास्ते में घटना घटी है, दूसरी घटना घटती है। जब घर जा रहा है तो होता है क्या बाबू, कभी जी टेरी के भाव दिए हैं, बड़ी के दमास्टर

गांव के कुछ दूर ही था, अब नजदीक गांव के पहुंचने वाला था कि देखा कि कुछ लोग किसी की जनाजे को लेकर आ रहे हैं। और जब नजदीक गया थक दे करेजा तो किया, लेकिन जब कुछ नजदीक गया तो देखा कि मेरा दोस्त भी जनाजे के साथ है, जनाजा के साथ मेरा दोस्त भी है। तब बाबू भयल का अल्लाह के लाइन में कवि जी लिखलन बढ़ के दाम।

शुभम आइल बा, सबके पहचानत बा, ए चचा सबके गोड़ परत बा, ए चचा इके गौवा में मर गई, सबसे पूछत बा शुभम 22 बरिस के हो चकल चलल बा, लेकिन गांव के लोगन के पहचानत देर ना लगल, काना फूसी होके लगल कि अरे यारी तो मंगल के लड़का बाबा, ये मंगल के लड़का है जो उन गांव छोड़ के चल गई। सब लोग कहल के बेटा ये दूसरे का जनाजा ना बा, बल्कि तहर बाबू तो के याद करत करत मर गई, उन्हीं का जनाजा बा, छाती पीट पीट के शुभम बाबू के लाश पकड़ के रोत बा, लेकिन बाबू अब रोले से का फायदा बा, गांव घर के लोगन के साथ अपने बाबू के स्मशान घाट पर गई बा जनाजा लेके, बाबू के जनाजा के कंधा दे ले बा, गांव घर के लोग कलन की सुना लो भाई, बाप के ऊपर हक बड़ा बेटा के होला, और जब इनकर बड़का बेटा आगल तब अब दूसर के हुआ अग्निदान ना दे, फर्ज ये बनत मा कि यही लड़का से अग्निदान दी वाह, शुभम अपने पिता का अग्निदान दी, लेकिन ओहर सौतेली मतारी का भी एक बेटा हो चलल बा, धीरे धीरे वो 7-8 वर्ष का हो गल बा, शुभम के ना रहले पर वही लड़का के गांव घर के लोग लेके ओकर माई भेजले रहल कि बेटा पिता का अग्निदान दी, फर्ज भी बनत रहे। आ जब गांव के लोग निर्णय ले लिहलन कि नहीं बड़का लड़का बाप के

0: लड़का का नाम लोरिक रख लेगा। आ जब घर पर ओके पता चला कि कौनो लड़का आयल बा ओके कहतन गांव के लोग की उहेग निदान दे, चली आयल घर से निकल के आ गई श्मशान घाट में, जबकि हिंदुओं के धर्म में ये मना है औरत श्मशान घाट में नहीं जाती है। चली आई लोगों को चीरते हुए, भीड़ को चीरते हुए चली आई, आकर कहती है कि कौन कह रहा है कि मेरा बेटा लोरी का अग्निदान नहीं देगा, कहां का ये लड़का है भिकमंगा का, कहां से चला आया है, कौन जानता है।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहां जाऊं, किससे इलाज कराऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हां, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्रामिक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
0: सभी लोग अवाक हो गए, सभी लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, ये मंगल का ही बेटा है पहली औरत का, शुभम, जो गांव छोड़कर चला गया था। लेकिन वो अपने जीत पर अड़ी रही। इस सारी कहानी और सारी बात सुन रहा था उस सौतेला भाई, उसका लोरी, शुभम का सौतेला भाई, शुभम की दूसरी माँ का लड़का जो लोरिक था 8-9 बरस का, वो सुन रहा था। उसके दिल में उबाल हो गया बाबू, और एक बात कहा है, क्या कहा है गाना के अंतिम लाइन में, का कहले बा, बढ़ के दा अरे के कई के रोल कई के का तू पवलू कहत बा, उबाल आ गई बा ओकरे शरीर में, खून में उबाल आ गल, कलश की धिक्कार है माँ, धिक्कार है कि थोड़ी सी धन के लालच में और तुम एक हीरा जैसे हमारे भाई को घर से निकाल दिया और कहती हो कि मैं एक निदान दूं, जबकि पिता के मुख का निदान वो बड़ा लड़का होता है, तो ये तो मेरा बड़ा भाई है और तुम इसे एक निदान देना देने देना नहीं चाहती हो। तुम कैकई का रोल निभा रही हो और कैकई कैकई का रोल निभा दिया। का कहता है वो लड़का, कैकई का रोल कैकई का।

माथे पर कलंक के टीका लगावलू, भैया के भगवलू, घर से बाबू के।

0: आज बाबू जो छोटा भाई है लोरिक, आज वही बड़का भैया के हाथों से पिताजी को मुखाग्नि दान दिलवाया। अपनी मतारी को बोला कि बताओ तुम कह कही बन करके और ये रोल निभाई, क्या पाई, क्या पाई हो? भैया को भी अलग कर दिया, हमारे हीरा जैसे भाई को घर से तू निकाल दिया, तेरे चलते भैया निकल गए, तेरे ही चलते पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, तुम्हें क्या मिला? अपने माँ को फटकारा है, बड़ा भाई के हाथों से पिताजी का मुखाग्नि दान दिलवाया है और बड़ा भाई शुभम को घर पर लाया है, ला करके दोनों भाई मिलजुल करके पिताजी के तेरे ही मनाए, तेरे ही किए, हित नात गांव घर सब पड़ोसी को जुटा करके भोज भात जो होता है तेरे ही में खिलाए पिलाए, और जब तेरे ही बीत गया तो बड़ा भाई शुभम छोटा भाई को बुलाया और कहता है कि भाई देखो अब एक जगह घर नहीं है, हम लोगों का दोनों भाई का दो जगह घर है, हम जहाँ रहते हैं वो भी उसमें भी तुम्हारा है, वहाँ भी कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ और यहाँ भी बस तुम ही हो, तो वहाँ भी तेरा हिस्सा है और यहाँ भी तेरा हिस्सा है, भाई हो तो ऐसा बाबू। बड़ा भाई राम बना और छोटा भाई लखन बना,
1: अरे वाह,
0: राम लक्ष्मण की जोड़ी आज गांव देख करके आश्चर्यचकित है, दोनों भाई मिलजुल कर रहते हैं, कभी सेठ जी के घर जा करके वहां का भी धंधा दोनों भाई मिलकर देखते हैं, गांव पर भी आकर के अपने खेत बारी घर द्वार को देखते हैं।
1: वाह वाह,
0: विरह का अंतिम लाइन रहा, जय जयकार गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी कथन

श्रोता लोग रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के ई बिरहा रउवा सभे के बहुते अच्छा लागल होई। ता अगर रउवा सभे चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेजे के ता हमनी के एसएमएस नंबर बा 7277165696, हमनी के ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोड़ गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रउवा कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। चली अब आज खातिर अपन दोस्त अफसर अली के दी जाए के इजाजत। नमस्कार और इस सुनत रही अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
8: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अनुसंधान अधिकारी यूनानी, कुल पद 16 हैं जिनमें बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। अनुसंधान अधिकारी पैथोलॉजी 2 पद, अनुसंधान अधिकारी फिजियोलॉजी 1 पद, सहायक अनुसंधान अधिकारी 1 पद, सहायक अनुसंधान अधिकारी वनस्पति विज्ञान 2 पद, स्टाफ नर्स 7 पद जिसमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, लेखाधिकारी मुख्यालय 1 पद, अनुसंधान सहायक रसायन विज्ञान 2 पद, बैकलॉग रिक्तियों समेत अनुसंधान सहायक वनस्पति विज्ञान 3 पद, अन्वेषक सांख्यिकी 3 पद, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 12 पद, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक 3 पद, प्रूफ रीडर 1 पद, हिंदी सहायक 2 पद, फार्मासिस्ट 6 पद, सोशल वर्कर 2 पद, रेडियोग्राफर 1 पद, कंपाउंडर 3 पद, आशुलिपिक ग्रेड 3 7 पद, उच्च श्रेणी लिपिक UDC 31 पद, निम्न श्रेणी लिपिक LDC 26 पद, स्टाफ कार चालक 4 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ 43 पद जिसमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.ccrum.res.in। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक रहेगी। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उप सलाहकार औषधीय पादप, सहायक सलाहकार वनस्पति विज्ञान, वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी वनस्पति विज्ञान, सहायक अनुसंधान अधिकारी और लेखाकार, इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। पात्रता मानदंड, प्रारूप आदि अन्य जानकारियों के लिए देखिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट ayush.gov.in। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026। कैंसर उपचार अनुसंधान एवं शिक्षा का उन्नत केंद्र टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस, सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी, सहायक प्रोफेसर हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, सहायक प्रोफेसर पैलिएटिव मेडिसिन सहायक प्रोफेसर, एनेस्थीसियोलॉजी सहायक प्रोफेसर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सहायक प्रोफेसर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी सहायक प्रोफेसर, इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर सहायक प्रोफेसर, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैज्ञानिक अधिकारी, ट्रांसलेशनल कैंसर रिसर्च वैज्ञानिक अधिकारी, कैंसर बायोलॉजी मेडिकल फिजिसिस्ट ई वैज्ञानिक अधिकारी, डी बायोस्टैटिस्टिक्स वैज्ञानिक अधिकारी, डी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वैज्ञानिक अधिकारी, सी सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी वैज्ञानिक अधिकारी बायोस्टैटिस्टिक्स वैज्ञानिक अधिकारी, बी न्यूक्लियर मेडिसिन वैज्ञानिक सहायक, बी सी आर आई सुविधाएं तकनीशियन, ए सी आर आई लैब्स। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट actrec.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
11: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
15: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
14: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
15: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
14: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026

0: निर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का

0: माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
2: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
14: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
15: क्यों, क्या हुआ है?
14: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
15: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
14: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
15: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
16: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
17: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। थाना की दलाली करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक विकास मित्र की हो गई मौत। आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। 215 लीटर शराब के साथ एक स्कॉर्पियो सवार तस्कर गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ने एक युवक को पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना में दलाली करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि थानों में दलाली करने वालों की अब खैर नहीं है। थाना अध्यक्ष के नाम पर आरोपी के द्वारा केस में एक गिरफ्तार आरोपी को मुक्त कराने के लिए अवैध वसूली का प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी संतोष विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विजयपुर थाना अध्यक्ष के नाम पर आरोपी ने 2 लाख रुपए का मांग किया था। अभियुक्त को मामले से मुक्त कराने का प्रलोभन देकर 2 लाख के वसूली की जानकारी जब पुलिस को हुई, पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। इसमें 1 लाख रुपया आरोपी के मोबाइल पर पीड़ित के द्वारा ट्रांसफर किया गया था। यह साक्ष्य भी पुलिस को मिला और इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस थाना के दलाल पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मंतोष विश्वकर्मा पिता हंस नाथ विश्वकर्मा ग्राम जिगना दीक्षित थाना भटनी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने अपराध में संलिप्तता स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील किया है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली धोखाधड़ी अथवा भ्रामक गतिविधि की सूचना तत्काल गोपालगंज पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर दें। इधर सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा टोल टैक्स के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से विकास मित्र कर्मी शैलेश राम की मौत हो गई। हादसा सुपौली बरहिमा के पास उस समय हुआ जब मृतक तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने इन्हें जोरदार ठोकर मार दिया और फरार हो गया। घटना के बाद वहां हलचल मच गया। तुरंत लोगों ने घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक सिधवलिया थाना क्षेत्र के खजूरिया पंचायत में काम कर रहा था। विकास मित्र के रूप में सेवा देने वाले शैलेश राम के मृत्यु के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने बाद परिजनों को सौंप दिया और इस मामले में आगे की विधि कार्रवाई कर रही है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए 215 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक लग्जरी गाड़ी को पकड़ा है और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर बघवार के पास पुलिस ने छापेमारी की और स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। इस गाड़ी से 215 लीटर विदेशी शराब मिली, साथ ही कार को जब्त कर लिया गया है और इसमें वाहन मालिक और गाड़ी के चालक के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने 2024 में अभियुक्त बबलू चौहान को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहरा दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25(1)(b) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वही आरोपी को 6 महीने की और कठोर कारावास तथा 1,000 रुपए के अर्थ दंड से एक और धारा के अंतर्गत दंडित किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह निर्णय समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अवैध हथियारों का निर्माण, क्रय विक्रय, उपयोग अथवा बिना वैध अनुज्ञप्ति के उनका कब्जा रखना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे हथियार समाज में भय, असुरक्षा तथा आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में कल 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें कई लोग घायल थे, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बैकुंठपुर पुलिस FSL की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद इसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी की है। बताया जा रहा है कि घायलों का उपचार सदर अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति धनजी शाह को सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 311-26 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए त्वरित कार्रवाई की और घटना में संलिप्त अभियुक्त सोनू शाह पिता हरी शाह साकिन सफियाबाद थाना बैकुंठपुर को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वर्तमान में वहाँ विधि व्यवस्था सामान्य स्थिति में बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालपुर नहर के दुबोलिया तीन मुहानी के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक ई रिक्शा से 195 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को जब्त किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में कटिया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर वार्ड नंबर 5 के रहने वाले शैलेश गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने छापेमारी करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। अब पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसकी ई रिक्शा और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो रिमझिम की इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थाना की दलाली करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक विकास मित्र की हो गई मौत। आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। 215 लीटर शराब के साथ एक स्कॉर्पियो सवार तस्कर गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ने एक युवक को पकड़ा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
19: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
20: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
21: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
20: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
22: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
23: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
24: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
25: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखुल रोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
26: सुनिए,
27: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
26: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
27: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
26: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
28: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
29: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
28: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
30: प्रसाद क्लिनिक।
31: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
30: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
31: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
25: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
24: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
25: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
24: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
25: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
24: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
25: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
24: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
25: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
24: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
25: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
25: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
25: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
25: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे। समय 9:20 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज का नंबर है 7277165। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग से ये बातें हर रोज़ सजा की जाती है, बताई जाती है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है, ओल्ड इज़ गोल्ड या 90s की, और पुराने गाने के साथ इंजॉय करना है। कुछ श्रोतागण ऐसे भी है जो नए गाने को लेकर अपने लाइन में खड़े इंतज़ार करते हैं और अंत में होता यही है कि गाने की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती है। तो आप जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, मेरा सॉन्ग सुना सकते हैं क्या। बिल्कुल क्यों नहीं सुना सकते हैं, सबकी फरमाइश पूरी करेंगे और आपका क्यों नहीं करेंगे। जैसे मैसेज पहुंचेगा, जैसे गाने के फरमाइश वैसे पहुंचेगा, वैसे वैसे सबकी फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा मेरा। और इस मैसेज को करती हैं सोनी और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि और ये बीते हुए कार्यक्रम को लेकर अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि बेस्ट ब्रहा लगा मैं सनी राज पटेल। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय सर, मैं सुजीत कुमार नरेनिया से और मुझे गाना सुनना है। और गाने का बोल देते हैं, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। कहते हैं कि सर पहली बार मैसेज किया हूं, प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है 7277165 पे। फिलहाल सुजीत जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो एमछीएम 94.4 FM पे।

कमाल के शाम रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी और अलका याग्निक उदित नारायण जी की आवाज़ों में और इस गाने के फरमाइश करने वाले सुजीत जी नरेनिया से। और काफ़ी प्यारा सॉन्ग रहा आपके द्वारा सुजीत जी। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए तो आगे भी गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। लिखा गया है कि नमस्ते सर, मुझे भी गाना सुनना है और गाने का बोल है बंधन बंधन प्यार का बंधन। इस मैसेज को करती हैं काजल गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले होगी। और यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिखा गया है कि हेलो सर, मैं नीतीश कुशवाहा रामचंद्रपुर से और हीरो पुराना मूवी का सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल प्ले करने की कोशिश रहेगा। यदि आप लोग पुराने गाने के फरमाइश करते हैं तो एकदम गाने के फरमाइश पूरा किया जाएगा। आप सभी से हर रोज़ बताई जाती है कि आप लोग इस कार्यक्रम में स्पेशली पुराने गाने के फरमाइश करें, 90s के गाने या ओल्ड इज गोल्ड। जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहता है, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, वो अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सोनू बाबू, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप कौन, अपना भी परिचय दें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और काजल की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे। बंधन बंधन प्यार का बंधन।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे भोजपुरी प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी। और सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज का नंबर है 7277165। ध्यान रखना है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है। यदि आपको भोजपुरी पसंद है तो उसको भी पूरा किया जाएगा, बशर्ते आप पुराने गाने की फरमाइश करेंगे तो ही। आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो आगे मैसेज शामिल करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज नीतीश कुशवाहा जी किए हुए हैं रामचंद्रपुर से, और गाने की फरमाइश करते हैं हीरो ओल्ड मूवी से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे कुछ भी मैसेज और पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना है। गाने का नाम है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ जी हाँ, प्यार करता हूँ, ये गाना घर की इज्जत फिल्म से है। तो चलिए बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, नमस्ते सोनू सर, मैं सोनू वर्मा जौनपुर से, और मुझे ये गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाँ भैया, मुझको गाना सुनना है, मैं बुलेट चौधरी, तीन भेड़िया से और भक्ति पवन सिंह के। तो कौन से गाने सुनने हैं, यदि आप उस गाने के नाम बताते हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और हाँ, पुराने गाने के नाम बताना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या जी गुस्सा है क्या? तो हम क्यों गुस्सा होंगे, सबकी फरमाइश आएगी, सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा मेरा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हिंदी फिल्म का गाना है पुराना वाला, मुझको जीना है जीने दो, बेस्ट चंपारण से। इस मैसेज को करते हैं, अपना नाम तो नहीं दिए हुए हैं, तो फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, नाम बताया और आपकी भी फरमाइश हम पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और नीतीश जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी, इंजॉय करते हैं रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे।

रेडियो एमजी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है रोहित जी की, और अभी हम काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी, और शो एसएमएस फरमाइश के साथ आप सब बने हुए। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे गाने के फरमाइश रोहित जी की पूरा करेंगे, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है इज्जत मूवी से, और गाने का बोल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ जी हाँ प्यार करता हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल में तुझे बिठाकर, गाना सुरेश साहब त्रिबिरवा से करते हैं मैसेज। तो बिल्कुल सुरेश साहब जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी रोहित जी के गाने के साथ रेडियो 90.4 एफएम पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी

0: की दौरे, झटकी, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: Excuse me, boss. You have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सोशल एसएमएस फरमाइश का और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए, लेकिन मैसेज शामिल करने से पहले आज हम फिर से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे आप सभी के बीच में। और आज हम सभी जानेंगे काला ज्वार के बारे में और काला ज्वार क्यों होता है, कैसे होता है, पूरी जानकारी साझा की जाएगी एक दूसरे से। और कालाजार एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे विसरल लिस्मेनियसिस भी कहा जाता है। यह परजीवी के कारण होता है, बालू मक्खी के काटने से फैलता है। भारत में यह रोग विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। कारण संक्रमित बालू मक्खी के काटने से, गंदगी और अस्वच्छता वातावरण के कारण होता है, कुपोषण और कमजोरी प्रतिरक्षा की शक्ति के कारण होता है। इसके लक्षण हैं लंबे समय तक रहने वाला बुखार, वजन कम होना, कमजोरी और थकान महसूस करना, भूख ना लगना, तिल्ली और यकृत का बढ़ जाना, त्वचा का रंग कुछ मामलों में गहरा पड़ना, जिससे इसका नाम काला ज्वार पड़ा। उपचार इसके हो सकते हैं डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं का पूरा कोर्स करना, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में आराम करें, समय पर जांच और उपचार करवाना। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर काला ज्वार की जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। किसी भी आप स्वास्थ्य केंद्र पर, पीएचसी या सदर अस्पताल में आप जाएं, इसका उपचार निःशुल्क है और साथ ही साथ इसका फुल कोर्स दवा चलाने का सरकार प्रयासरत है। आप यदि जाते हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप केवल रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका जानकारी आप स्वास्थ्य कर्मी को दें और डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के सलाह के अनुसार अपने आप को रखें। बचाव के उपाय, घर और आसपास साफ सफाई रखें। बालू मक्खियों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। दीवारों और घरों के कीटनाशकों का छिड़काव करें। रोग के लक्षण देखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। ये सारे इसके घरेलू उपाय हैं। यदि आप इसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप इससे काला ज्वार होने से पहले अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप लोग रेडियो रिमझिम के माध्यम से जो भी सुझाव साझा की जाए स्वास्थ्य सही लाभ कही के अंतर्गत, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने जीवन में इसको अपनाना है। अपने जीवन के साथ साथ अपने आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं उनको भी बताना है, और आपको ऐसा लक्षण किसी भी व्यक्ति में देखे तो उसको प्रेरित करना है कि आप इसे दबाए नहीं, आप तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और इसका जांच कराएं। इसका जांच निःशुल्क है, किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं तो ऐसे छोटी छोटी जानकारियां हर रोज़ दी जाएगी। तो फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम में जो भी मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे। फिलहाल अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सोनो भैया जी आपका गाना प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश करते हैं सोनू वर्मा जी जौनपुर से, और कहते हैं कि मुझे पृथ्वी मूवी का सॉन्ग सुनना है, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा।
तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। सोनू जी आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी गाना सुना दीजिए। बिल्कुल एक एक करके सबकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें, आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर देंगे। फ़िलहाल हम सोनू जी की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी फरमाइश के साथ, इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो 96.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छिम 90.4 एफएम पे सुन रहे हम सभी, जिस घड़ी तुझको रब ने बनाया होगा, प्रीतमी मूवी से गाने की फरमाइश किया गया है। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेम छिम सुनने के लिए और इतने प्यारे गाने की फरमाइश करने के लिए, और आगे एंजॉय करें अगले गाने की फरमाइश के साथ। और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है यहाँ पे, और गाने का बोल दिया गया है पवन सिंह की आवाज़ में, माई हो तनी आ जाई तू। तो चलिए बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि थैंक्स सर जी सॉन्ग चलाने के लिए, सोनू वर्मा जौनपुर से, आपको धन्यवाद है रेडियो रेम छिम सुनने के लिए और आगे बन रहे हमारे साथ। आगे गाने को प्ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करने वाले हमारे श्रोतागण हैं

बुलेट चौधरी तीन भिड़िया से जुड़े हुए हैं और पवन सिंह के आवाज़ों में गाने के फरमाइश किए हुए हैं, तो इन्हीं के गाने को हम प्ले कर रहे हैं और इंजॉय करते हैं, सुनते हैं हम सभी रेडियो एम छम 90.4 FM पे।

ट्रेडरियम जिम 94.4 FM पे प्यारे से सॉन्ग को सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश ले करते हैं। और गाने का बोल दिया जाता है दिल में तुझे बिठाकर। सुरेश शाह जी तिरबिरवा से इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे क्योंकि समाप्ति का भी समय हो गया है और गाने के बाद फिर से मैं इसे शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपका ही अंतिम गाना रहेगा। और जो भी श्रोतागण आज छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय की कमी है और जितना समय हमें मिला है उतना हमने पूरा किया और आप सभी के साथ एंजॉय किया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्ते मैडम जी, बहुत इंतजार कर रहे रवन।
1: अच्छा, नमस्ते,
2: कैसे हैं मैडम जी?
1: मैं
2: अच्छा है ना?
1: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा।
1: भोजन हो गया आपका?
2: हाँ हो गया, मेरा तो हो गया ना मैडम जी।
1: हाँ हाँ, मेरा भी हो गया है। सॉन्ग कौन सा?
2: धीरे धीरे प्यार से बढ़ाना है आदि के पूजा का,
1: और ये सॉन्ग डेडिकेटेड भी है
2: आपको। जितना रहे हैं
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
2: जी मैडम जी, सब बढ़िया। हम लोग
1: मस्त रहिए। जी जी बिल्कुल रहेंगे, ताकि आप लोग की रिकॉर्डिंग चलती रहे और हम आप लोग की फरमाइश के सॉन्ग बजाते रहे। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रेंजन 90.4 FM।
2: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: जी मैम, मैं सुनील साबरी बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
0: जी जी, कैसे हैं आप
1: भैया? रिमझिम सुन रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: हमारे एक मित्र विशाल साहू और उसकी फरमाइश है रंगी, उसका नाम है दूध का कर्ज
0: जी,
1: और गाने के बोले शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
0: ओके, और सब बढ़िया है?
1: और बढ़िया है दीदी, धूप निकल रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तवाली सकल दे रही है। हमारे आपके बिहार में कैसा मौसम है?
0: अभी तो मौसम हल्का हल्का धूप खिला हुआ है और हल्की हवा चल रही है।
1: अच्छा,
0: मौसम मतलब ठीक है।
1: और कुछ दोस्तों का नाम बताता हूँ जिनको ये लड़ना डिटेड है।
0: जी जी, बता दीजिए।
1: अपने गजराज सिंह लोधी है, महिला ढाका ने बड़ा गाँव से, गोपाल ओझा है ककवासा से, और गोलू साहू है बड़ौदा से। और ये गाना आपको भी डेडिकेट है?
0: जी जी बिल्कुल। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी, गाना सुनना था।
6: जी, नाम बता दे अपना।
5: ज्योति कुमार बादल है, जिला भागलपुर, तिरपति ग्राम प्रसन्ना।
6: अच्छा जी, क्या हाल है आपका?
5: ठीक है।
6: तबीयत कैसी है आपकी?
5: तबीयत तो भी ठीक है।
6: भोजन हो गया है?
5: हाँ, भोजन तो हो गया।
6: अच्छा, तो बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
5: वही गाना सुना दीजिए, टिप टिप बरसा पानी।
6: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
5: आप ही को रहेगा और जितने भी लिसनर है।
6: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम एलुमाइन चॉइस में।
0: जी क्या कुमार बोल रहा हूँ, चिंतापुर से।
1: क्या हाल है आपका?
0: बढ़िया है जी, आप बढ़िया? आपका क्या हाल चाल है?
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: मैडम आपका नाम क्या पड़ेगा?
1: मेरा भारती पड़ेगा।
0: आज फरमाइश बजा दीजिए मैडम मेरा, वो खिड़की वाली वाली।
1: खिड़की वाली
0: बहुत फेवरेट गाना है मेरा।
1: अच्छा, पुराना सॉन्ग है क्या?
0: पुराना सॉन्ग है।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: मेरे दोस्त को, और रेडियो रेंजर सुनने वाले हैं, रेडियो रेंजर वाले श्रोता हैं, उन लोगों को सबको सुनवाना चाहते हैं।
1: अच्छा,
0: ये कितना बजे से बजाइएगा? आज मैडम ये वाला गाना बजाइएगा,
1: फिर गाना प्ले करती हूँ। सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंजर में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्ते मैम।
6: नमस्ते,
5: हम घासीराम बाराबंकी से बोल रहे हैं मैम।
6: जी जी, क्या हाल है आपका?
5: हाल चाल मैम बढ़िया है।
6: तो क्या हो रहा है अभी?
5: अब घर काम वाम खत्म करके थोड़ा बैठे हैं छांव में, बदली है तो एक गाना सुनवा दीजिए।
6: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
5: वो गाना है ना, दुनिया से दूर जा रहा हूँ माँ तेरे पास आ रहा हूँ।
6: डेडिकेटेड भी है
5: जी, हमारे राकेश भाई, संजू भाई है, पूर्णवासी दादाजी है और राजकुमार भाई हैं।
6: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: डॉक्टर जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है। कन्या कुमार मिश्रा दिल्ली से। चलिए, और सब
1: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ, आप लोग?
1: हाँ हाँ, हम सब भी ठीक है।
0: बस आप लोग ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेंगे। सोनी जी आ गए?
1: जी सोनी जी भी आई हुई है।
0: आई है तो चलेगी, ये कन्फर्म हो जाता है की सोनी जी आ गई है तो चलेगी। तो
1: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: आगे गाना है रोहित प्रधान का, ज्ञान के दाम ना लगी।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सोनी जी को, भारती जी को, नया मनोरमा जी आए हैं उनको भी।
1: हाँ,
0: जितना सारे लिस्टनर सुनने वाले हैं, मेरे नाम पहचानने वाले हैं सब सुनेंगे, किसका किसका नाम लिया जाए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: थैंक यू मैम, सब सुना देना।
1: ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494। जी हाँ, 80029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो विक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: क्या हाल है?
5: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
6: मेरे भी बढ़िया है। पहचान रहे हैं क्या? मेरा नाम गणेश कुमार, टीकर नारायण से।
5: अच्छा,
6: आप सब बताइए, सब बढ़िया है?
5: हाँ, मेरा बढ़िया, आप अपना बता दीजिए।
6: मेरा भी बढ़िया है।
5: भोजन हो गया है?
6: खाना तो हो गया है, अब दूसरा और खाएंगे। 12 दिन हो रहे हैं तो क्या करेंगे।
5: हाँ, जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए, खाने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
6: हम घर के भरोसे नहीं रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहीं पे खा लेते हैं।
5: सब तो बढ़िया है।
6: आप खा कर आए हैं?
5: हम भी खा के ही आते हैं और लंच भी लाते हैं।
6: चलिए बढ़िया है, और सब बताइए।
5: सब बस काम हो रहा है अपना अपना। आप बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
6: सॉन्ग सुनना है ये बजा दीजिए, खेसारी लाल की आवाज में, राजा पायल आवाज करता।
5: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: आपको है, दिव्या मैम को, सोनी मैम के है, पूरा पूरा रेडियो रिमझिम लोग का है, और मेरे बहन है करिश्मा के भी है, और सऊदी अरब में जो मेरे भाई है उन लोग का भी है, अफसर सर सऊदी अरब में है उनको भी।
5: ओके,
6: अपना डायरेक्टर सर को भी।
5: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: हम खालस से राजा महाराजी प्रसाद।
1: कैसे हैं आप?
0: ठीक है, आज तो दिन निमन होता है, हवा लगा रहते है मैं। हाँ, गाना सुने बात उड़ के पिंजरा चिड़ैया तो उड़ गई।
1: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, जितना लोग सुनते सब कुछ सुनिए, हम सुने।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सुने। हाल चल रहा हो? ठीक है ना?
0: हाँ, हाल चल रहा ठीक बा।
1: क्या होता अभी
0: दुकान?
1: गाना से
0: नमस्ते।
1: जी जी, सुना तो रेडियो रंजन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।

0: नमस्कार भारती
1: जी, गाना सुनना है?
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
1: आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, पूरी अखन के खनकाने वाले
0: है। ये, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी बैठ के रेडियो सुन रहे हैं।
0: अच्छा बढ़िया है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो 91.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
1: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे फोन लगाते हुए। मैम बहुत मुश्किल से अभी तो फोन मिला है मैम, तो बस बैठे थे रेडियो रंजन का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा,
0: और मैम हमारे यहाँ तो बारिश चालू है मैम, आपके वहाँ क्या कैसा मौसम है अभी?
1: मेरे यहाँ तो कल का बारिश हुआ है।

0: जी
1: आज अभी
0: जी जी जी जी जी
1: चलिए बढ़िया, आपके यहाँ बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया होगा।
0: जी जी जी अभी तो ठंडा ही है मैम, बाकी अभी बारिश तो चालू नहीं है मैम, बाकी थोड़ा हल्का फुल्का बीच बीच में हो रहा है मैम। जी मैम, तो बैठे थे तो आज एक गाना है मैम, गाने से बोल है जो भी कसम में खाई थी हमने, यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते थे।
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
0: जी जी ओके मैम, बस ठीक है बैठे हैं मैम, अभी तो नाश्ता हुआ मैम, खाना अभी बाकी है मैम, आपका हुआ मैम नाश्ता? वास्ता
1: जी नाश्ता हो गया है।
0: जी जी जी जी मैम, तो गाना फिर सुनवाइयो। ओके मैम,
1: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं. नंबर है 8029994911. जी हाँ, 8029994911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल.
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में.
4: सोनी जी है आप?
5: नहीं.
4: हाँ हाँ, मैं असम से महेंद्र राउत बोल रहे हैं.
5: कैसे हैं आप?
4: हाँ हाँ, ठीक है. आप लोग?
5: हम सब भी ठीक है.
4: वहाँ का तो गर्मी ज्यादा है वहाँ पर
5: जी. अभी तो मतलब कल का बारिश हुआ है तो अभी ठीक है मौसम.
4: असम में तो बारिश होते रहता है, यहाँ बहुत अच्छा है. यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अच्छा है. हमको एक भोजपुरी गाना सुनना था.
5: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है.
4: गंगा किनारे मोर गाँव, ऐसा कोई फिल्म है ना भोजपुरी में
5: जी,
4: उसी का कोई गाना सुना. कोई भी उसमें का अच्छा गाना एक भोजपुरी सुना दीजिए. हमारे साथ है अनुज कुमार, शशिकला, सुनील, अनिल, प्रेम कुमार और आप है और श्रोतागण.
5: ओके,
4: ठीक है, धन्यवाद.
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM.

0: हेलो
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेगुलेशन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ नीतीश कुमार माझे बोलता है, थोड़ा सा प्रतिवाद दिला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, आपका जवाब अपना बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: मैंने गाना सुना दे।
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
0: आवाज मैं जान चाहता हूँ नाम आपसे।
1: जी और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपका सुनाना चाहता हूँ फरीदा जी के, रजनीश के, सब कोई के, रिमझिम को। ठीक है, मैंने ये गाना फरीदा जी को डेडिकेट
1: किया। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।

0: जी मैडम, मैं झारखंड का गोड्डा जिला से बोल रहा हूँ मैडम। मेरा बसंतराय प्रखंड है, रामपुर गांव है। तो मैं आपका रेडियो बरकरार हमेशा सुनते रहता हूँ मैडम
1: जी।
0: तो कुछ एक सॉन्ग लगा देना चाहते हैं आप, लगा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
0: ये रेडियो रिमझिम में लगा है ना मैडम?
1: बता दीजिए।
0: हमें तुमसे प्यार है।
1: हमें तुमसे प्यार है सॉन्ग, किसी मूवी का है क्या?
0: नहीं, नॉर्मल सॉन्ग है।
1: ओके, एल्बम सॉन्ग है?
0: हाँ, एल्बम सॉन्ग है।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: जी मैडम।
1: बता दीजिए।
0: ये स्पेशल मेरे वाइफ के लिए डेडिकेटेड है।
1: जी।
0: मेरा वाइफ का नाम पूजा है मैडम, उनके लिए खाली स्पेशल है। वो भी सुन रही है इसीलिए बोल रही।
1: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिद्धिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं पप्पू ठाकुर रामदास थाना कटरा जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, क्या हाल है आपका?
1: बढ़िया है जी, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो बताइए, आज का मौसम कैसा है?
1: बहुत गर्म है, बहुत गर्म है।
0: गर्मी तो है,
1: 37-38 चल रहा है डिग्री तापमान है। बोल रहे एक सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है, तो क्या नाम है उसका? फिल्म का ना अमिताभ बच्चन का फिल्म है जो रवि, रवि का कोई एक गाना सुना दीजिएगा।
0: अच्छा, गाने का नाम नहीं याद है?
1: हाँ, रवि के कोई एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। महफिल में जो गाना होता है ना उस साथ में सीना राय भी है जो साथ, कोई वाला गाना सुना दीजिएगा। मुझे 9 लाख मंगा रहे सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: ओके ओके,
1: थैंक यू।
0: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हाँ जी, मैं राम बाबू सिंह बात कर रहा हूँ।
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगजिन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: कहना सुनना चाहते हैं पवन सिंह का, टाट दही कैसे संहतिया पुरान हो।
6: जी,
7: टाट दही कैसे संहतिया पुरान हो।
6: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
7: हाँ, सभी रेडियो रंगजिन के श्रोता।
6: तो तबीयत कैसी है आपकी?
7: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त है।
6: ओके, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंगजिन। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हम पहले

0: रोग के दवाई न पैदा बताई तब जिया कि प्यार हो गई।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है, अपना बताइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
3: खाना खा ली?
2: जी जी, मैंने खाना खा लिया है। और आपने?
3: मैंने भी खा लिया।
2: तो क्या कर रही हैं अभी?
3: कुछ नहीं, सोई हूँ।
2: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगी
3: आपका पसंद का कोई थी?
2: मेरी पसंद का? आप अपना पसंद नहीं बताएंगी?
3: नहीं, आज अपने मन से बजा दीजिए।
2: हिंदी सॉन्ग सुनेंगी या भोजपुरी?
3: हिंदी।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
3: आपको?
2: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करूं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार,
2: मैं संतोष यादव घर धर्मपुर का जिला गोपालगंज से बोल रहा
3: हूँ जी। क्या हाल है आपका?
2: बढ़िया है मैडम।
3: तो क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, उड़ीसा में ड्यूटी हो रहा है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साथ खड़े थे, बैठे हैं।
3: बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी?
2: भाई होला तो बैठे और
3: आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बोल दो।
2: वो भोजपुरी सॉन्ग है, भाई होला जो पति के बैठे वो भोजपुरी सॉन्ग।
3: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: हाँ, वो है अर्जुन है, राहुल है, इन सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
3: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
1: बुलेट कुमार
0: जी, क्या हाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, अपना बताइएगा।
0: मेरा भी बढ़िया है, तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
1: आजकल काम हो रहे हैं घर पे।
0: चलिए बढ़िया है। भोजन हो गया है तब?
1: हाँ भोजन हो गया है।
0: ओके, तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
1: यस मैडम, गाना सुनना चाहते हैं।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: हिंदी सॉन्ग।
0: गाने का नाम बता दीजिए मुझे।
1: नैनो में महबूब का।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: अपने दोस्तों का। जी अपने दोस्तों का।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है ठीक।
0: सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: झला।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: इतना सवाल एक बार पूछ ले बू, पहले अपन बताओ तो हम अपन बताओ तनी।
1: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताई, बिचारा के बाद इशारे में समझ ली है।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार के सुप्रभात में रेडियो रिमसिंह की पूरी परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:13 तथा सूर्यास्त 6:47 पे होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। ज्ञान वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। तो श्रोताओ, हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।